मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 2, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: मृत्यु और माँ अमृतंगम है, हमरा मृत्यु सा अमृतव दिस लो चलू, ई उपनिषदकालीन प्रार्थनाक अंश थिक। मृत्यु सदैव भयोत्पादक रहल अछि, एहन के अछि जकरा मृत्यु सा भय नहि हो, संगहि अमरता ककरा प्रिय नहि छैक। ई मृत्यु आ अमरत्वक विचार सदैव मानव मन के मथैत रहल अछि। भगवान बुद्ध अमरत्वेक जिज्ञासा में गृहत्यागी भेलाह। नचिकेता मृत्यु आ अमरत्वक विभेद बुझक लेल यमराज लग गेल रहथि। प्रायः सब तत्ववादी दार्शनिक मृत्यु आ अमरत्वक विवेचना कयलनि अछि, आ सांख्यवादी दार्शनिक तो मृत्यु के मानते ही नहीं छथि। महाभारत में सनत सुजात अमरत्वक स्वरूप स्पष्ट कयलनि अछि। सनत सुजात धृतराष्ट्र संवाद में नियतिवाद आ कर्मवादक विरोध स्पष्ट रूपेण उल्लिखित अछि। धृतराष्ट्र नियतिवादी छलाह, किंतु विदुर, सनत सुजात, कृष्ण आदि नियतिवादक समर्थक नहीं छलाह। ओ लोकनि प्रज्ञावादी वा आयतिवादी छलाह। आयतिवाद स्पष्टतः नियतिवादक विरोध करै छल। हमरा लोकनिक मूल प्रश्न ई अछि जे मृत्यु की थिक आ अमृतत्व ककरा कहै छै। प्रज्ञावादी मोह के मृत्यु कहै छथि, मोहक त्याग अमृतत्व थिक। दोसर शब्द में प्रमाद मृत्यु थिक आ अप्रमाद अमृत थिक। असुर लोकनिक पराभव प्रमादे के कारण भेलनि। ब्रह्मवादी अप्रमादक आश्रय ग्रहण क ब्रह्मपद वा अमृतक अधिकारी बन जाय छथि।

0: मृत्युक कोनो प्रकट रूप नहि अछि, ओ बाघ जकाँ जीवके नहि खाइछ। मृत्यु बाहरसँ नहि अबैछ, ओ तऽ जीवधारीक देहमे निवास करैछ। कोना शरीरस्थ प्रमादे मृत्यु थिक, क्रोध मोहादि दुर्गुण शरीरमे रहनिहार ओही मृत्यु रूप प्रमादक वाहन अछि। एहिसँ मोहित व्यक्ति एहिठाम मरिकऽ ओहिठाम जाइ छथि आ पुनः ओहिठामसँ एहिठाम अबै छथि। बौद्ध आ जैन दार्शनिक लोकनि सेहो प्रमादकेँ मृत्यु आ अप्रमादकेँ अमृत कहलनि अछि। अप्रमादो आमत पदं प्रमादो मच्चतो पदं, अप्रमत्ता नमीयन्ति जे प्रमत्ता मता जथा। संसार भरिक दुःखवादी दार्शनिक मृत्युकेँ महादुःखक संज्ञा देलनि अछि। एहि मृत्यु दुःखसँ त्राण पेबाक अनेक प्रकारसँ मीमांसा होइत रहल अछि। वैदिक दृष्टिकोणक अनुसार ब्रह्मचर्य आ तप द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कयल जा सकैत छै। अथर्ववेदमे कहल गेल अछि, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ज्ञानमार्गी सांख्यविद लोकनिक मतानुसार मृत्युक कोनो अस्तित्व नहि अछि। सांसारिक विषय भोग दिस आँखि मुनिकऽ दौड़निहार व्यक्ति मृत्युतुल्य अछि। विषयमे गुण देखब पहिल मृत्यु थिक, विषयानुवर्ती होइतहि मनुष्य काम आ क्रोधक वशीभूत भऽ जाइछ, ई ओकर दोसर मृत्यु थिक। अन्तरात्मामे काम क्रोध मोह मत्सरादिक प्रवेश आत्माक हनन करैछ, इएह थिक मृत्यु। जे मनुष्य मृत्युक एहि रहस्यकेँ बुझि लैछ ओकरा लेल मृत्यु भय समाप्त भऽ जाइछ।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक प्रसारण है।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं लाभ, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।
1: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आई कृषि चर्चा में हम सब बड्ड उपयोगी आ सब किसान भाई लोकनिक लेल आवश्यक जरूरी गप अछि, ओहि संबंध में गप करब। ओ अछि वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं लाभ। हरेक किसान भाई लोकनि के मन में ई गप होइ छनि जे हम सब अपन खेत से नीक आ गुणवत्तापूर्ण फसिल के उपजा कोना लेल जाय। एहि काज में वर्मी कंपोस्ट के महत्वपूर्ण भूमिका अछि। तो आओ किसान भाई लोकनि, वर्मी कंपोस्ट निर्माण आ ओकर लाभक संबंध में विस्तार से गप करी। वर्मी कंपोस्ट जकरा केचुआ खाद सेहो कहल जाइए, जैविक खाद के सरा कऽ बनब वाला उच्च गुणवत्ता वाला खाद अछि। मूल रूप से कम शब्द में गप करी तो वर्मी कंपोस्ट माटि के उर्वरा शक्ति में वृद्धि करैत अछि, संगे फसिल के गाछ सभक संतुलित पोषण आ रासायनिक खाद के निर्भरता में कमी, संगे पर्यावरण के अनुकूल होइत अछि। वर्मी कंपोस्ट की होइत अछि? सामान्य गप में जँ विचार करी तो वर्मी कंपोस्ट चाली वा केचुआक मदद से कचरा सबके खाद में बदलब वाला एकटा प्रक्रिया अछि। एहि काज में चाली वा गोबर, सरल गरल पात, भनसाघर के अवशेष के ई चाली सब खा कऽ वर्मी कंपोस्ट के निर्माण करैत अछि। एहि विधि में चाली सब खा कऽ कास्ट बाहर करैत अछि। ई खाद देखबा में कारी रंग के भुरभुरी आ गंधहीन होइत अछि। वर्मी कंपोस्ट के खेत के दवाई सेहो कहल जाइत अछि। एकरा बनेबाक संबंध में जँ विचार करी तो सबसे पहिने किछु खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। सबसे पहिल गप स्थानक चयन। वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लेल छाहरि वाला हवादार स्थान के चुनाव करक चाही। संगे एहि गप के ध्यान राखल जाय जे सूर्य के प्रकाश ओहिठाम सोझे नहि पड़क चाही।

0: सतह के तैयारी जमीन के सतह से 304 फीट ऊंच वाला स्थान के चयन कर अपने आवश्यकता के अनुरूप एकर लंबाई आ चौड़ाई राख सकै छी। ओकर बाद गोबर आ कचरा के बेड के निर्माण करक चाहिए। परत बिछाए लेयर फॉर्मेशन सबसे नीचा में रेत व बाउल के सुखायल गाछक पात सब के देवाक चाहिए। ओकर बाद हल्लुक पुरान गोबर आ भंसाघर के सुखायल कचरा लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर धर के मोट परत के बिछा देवाक चाहिए। चाली आ केचुआ के छोड़ब ए मिश्रण में लाल रंग वाला चाली के राखल जात नमी को बना कर राखब आवश्यक ढेर के बोरा व टाट के पट्टी से झाँप देवाक चाहिए। नमी बना कर रखबाक लेल प्रतिदिन हल्लुक पानक फुहारा सेहो देव आवश्यक समय के जो गप करी तो बर्मी कंपोस्ट बनवा में लगभग 2 से 3 मासक समय लगत एकर उपरांत गहीर कारी रंग के चाय पत्ती जका भुरभुरी खाद बन जात आब अपने ये बर्मी कंपोस्ट के व्यवहार कर सकै छी। बर्मी कंपोस्ट के लाभ के संबंध में जो गप करी बर्मी कंपोस्ट के व्यवहार से खेतक माटिक उर्वरा शक्ति बनल रहत कियाक एमे नाइट्रोजन फास्फोरस आ पोटासियम जेहन तत्व सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहत खेत के जलधारण क्षमता एकर व्यवहार से मृदा के जलधारण क्षमता में वृद्धि होत फसिल के जड़ के विकास नीक जकाँ होत जैसे फसिल के गुणवत्ता में सुधार होत मूल रूप से निष्कर्ष रूपे कह सकती बर्मी कंपोस्ट आधुनिक आ टिकाऊ खेती के लिए बड्ड बेसी महत्वपूर्ण कम लागत में बेसी आ शुद्ध उत्पादन होत बर्मी कंपोस्ट के व्यवहार से खेतक माटि स्वस्थ रहत संगे किसान भाई लोकन के आमदनी में बेस वृद्धि होत संग अब आजुक कृषि चर्चाक समय संपन्न भ रहल अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा दिल जाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा, विषय था वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं लाभ, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अनिल कुमार कर्ण। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया

0: लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे टॉन्सिलाइटिस इस विषय पर, और इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार झा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि टॉन्सिलाइटिस क्या है।
3: टॉन्सिलाइटिस से टॉन्सिल का सूजन है। ये टॉन्सिल मुंह के अंदर मतलब जीभ के पिछले भाग में दोनों तरफ होता है। टॉन्सिल दो है।
2: अच्छा।
3: और इनका सूजन जो है वो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मूलतः ये बच्चों की बीमारी है। इसमें बच्चों को तेज बुखार आना, कान में दर्द होना, खाने में तकलीफ होना, मुंह से लार आना, तेज बुखार होना, ये सब उसके प्रमुख लक्षण हैं। और इसका समय पर इलाज होना, एंटीबायोटिक दवाएं और गार्गल से इसका इलाज होता है।
2: कैसे लोग समझें कि टॉन्सिलाइटिस है?
3: टॉन्सिलाइटिस को देखेंगे बच्चे के गले के दोनों तरफ देखेंगे कि एक उभार आ गया, गिल्टी आ गई गले में, और बच्चा बुखार में है, बच्चा को खाने में तकलीफ हो रहा है, खांसी भी हो रहा है, सर्दी है, तो समझें कि बच्चे को टॉन्सिल
2: निगलने में भी तकलीफ होगी। अच्छा, टॉन्सिल जो गले के दोनों भाग में आपने बताया उसमें दर्द होता है।
3: जी, दर्द होगा।
2: ऐसा देखा गया है कि जिस भी बच्चे को एक बार टॉन्सिलाइटिस हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, उसमें तकलीफ हो, तो बार बार ये समस्या आती है।
3: जी हाँ।
2: इसकी क्या वजह है?
3: उसकी वजह भी इन्फेक्शन ही है। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे प्रोन होते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए, कहा जाता है कि इसको ज़्यादा सर्दी होता है, तो उनका एक तो बॉडी का प्रीडिस्पोजिशन है, उसके शरीर की बनावट इस ढंग की है कि वो रिकरेंट इन्फेक्शन उनको होता है वहाँ पर टॉन्सिल का। तो इसके बचने के लिए ठंड से बचाव करना, ठंडा कोई पेय वगैरह नहीं पीना, और नियमित रूप से बच्चे को गार्गल घरेलू इलाज कराना, तो ठीक रहेगा।
2: कुछ लोगों में भी, मतलब बड़े लोगों में भी ये समस्या होती है।
3: जी, बच्चों में, बड़े लोगों में ये समस्या

0: कम देखी जाती है, लेकिन लक्षण उनमें भी यही प्रकट होगा। हाँ, मूलतः लेकिन ये बच्चों की बीमारी है।
1: अच्छा, जब एक बार तकलीफ हो जाए, बुखार रहे, तेज बुखार भी हो सकता है, एक कम भी बुखार हो सकता है, लगातार बुखार बने भी रह सकता है, ये दोनों ही स्थितियां हैं। अगर तेज बुखार हो, कुछ भी निगला नहीं जाए, उस कंडीशन में लोग क्या करें?
0: पैरासीटामोल दें, बच्चे को सिरप दें, सियाने को इसका टैबलेट दें और एंटीबायोटिक दवाएं दें।
1: और कोई भी दवा ले तो पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लेंगे, उसे कितनी दवाएं देनी है।
0: जी हाँ, उसकी मात्रा, उसका निर्धारण तो चिकित्सक ही करेंगे।
1: अच्छा, टॉन्सिलाइटिस के बारे में कहा जाता है, कभी कभी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन की स्थिति बन गई है।
0: ऑपरेशन की स्थिति तब होती है जबकि टॉन्सिल के ऊपर में मवाद बनाता है। अगर वो स्थिति आ जाती है तो वो और भयानक स्थिति, इसको पेरी टॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। अगर वो हो जाता है तो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराते हैं, या किसी को अगर बार बार इन्फेक्शन हो टॉन्सिल का तभी कराते हैं। साल में अगर 4-6 बार किसी को इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिल का, तो ऐसी परिस्थिति में टॉन्सिल का कराते हैं, या खाने में तकलीफ हो। उसके अलावा बहुत लोगों को स्नोरिंग की समस्या होती है, खलाटे बढ़ने की समस्या होती है, तो वो भी बड़ा टॉन्सिल होने से होता है, तो उस परिस्थिति में टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा।
1: टॉन्सिल का ऑपरेशन अगर एक बार करा लिया जाए तो क्या हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाती है, या फिर?
0: जी, टॉन्सिल तो नहीं रहेगा तो टॉन्सिलाइटिस तो नहीं होगा, लेकिन गले के और भाग में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं।
1: जी, उसमें लोग क्या करें?
0: फेरिंजाइटिस का भी वही इलाज होगा जो कि टॉन्सिल का इलाज, टॉन्सिलाइटिस का इलाज होता है।
1: अच्छा, कुछ सावधानियां, कुछ परहेज
0: जी
1: अगर लोग अपनाएं तो इस समस्या से जो बार बार उनका सामना होता है वो कम किया जा सकता है?
0: जी, उससे बचा जा सकता है।
1: क्या है ये सावधानियां?
0: ये सावधानियां है कि ठंड से बचाव करना सबसे पहले बहुत जरूरी होगा। धूल डस्ट ये सब, घर का जो झाड़ू वाड़ू है, इस सबसे अपने को थोड़ा परहेज रखना। ये कोल्ड ड्रिंक से सबका इस्तेमाल नहीं करना, ये जरूरी होगा परहेज में।
1: तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमने चर्चा की टॉन्सिलाइटिस के विषय में। डॉक्टर विजय कुमार झा, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले प्रस्तुत है समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

नमस्कार आथा, ये शिव मंत्र अभी आप सुन रहे थे सूर्य गायत्री के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

हे भोले शंकर पधारो, ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे हरिहरन के स्वर में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

महादेव ही विश्वनाथ। ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर और राम शंकर के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस शिव भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे अपने भुजबल से संपूर्ण विश्व को अधीन कर चुके महाबली रावण के अत्याचार से व्यथित पृथ्वी गाय का रूप धारण कर छुपे हुए देवताओं और मुनियों के पास रोते हुए पहुंची। ब्रह्मा ने उसे धीरज धारण कर श्री प्रभु के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया। स्वर महेंद्र कपूर का है।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:05 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:50 पर, दिन में 12:00, 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा दिन में 10:30 पर और हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत संध्या 6:10 पर। दिन के 11:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम, कलाकार होंगे पंडित जसराज। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर।

0: अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:40 पर। 7:50 पर 6:25 का प्रसारण समय होगा 6:25 पर। इसके तुरंत बाद 6:30 से आप सुनेंगे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा आज रात 8:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अंतरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुम् समर्थं सुदृढम् अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूसदेशस्य 2-दिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेश मंत्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम एफआईएच हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोकनि, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संगे स्टूडियो उपस्थित कल्याण, अहूँ के हमर नमस्कार।
0: रंजीत जी, आपके साथ साथ समस्त श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार। और जैसा कि हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते रहे हैं एक सुविचार से
1: जी,
0: और आज हमने सुविचार लिया है भगत सिंह की उक्ति से। सुविचार है, तर्क किए बिना किसी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। बिना कोई तर्क किए और कोई भी बात, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत हमारे आगे रख दिया जाए और उसको हम अगर मान लें तो यह भी एक प्रकार की गुलामी है। अर्थात हमें किसी भी बात को मानने के लिए उस पर तर्क करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर यह सभी दृष्टि से मानवोचित है या नहीं है।
1: देखियो ना, तो कल्याण अपना समाज में एक बरपे की कहावत आ जाए छै, जहाँ द्विपक्षीय वार्ता होइ छै, कोनो तरहक बातचीत होइ छै दू पक्ष के बीच में, तो ओहिठमन कहल जाइ छै जहाँ सबटा किछु बात के समझ बुझि लिअ तकरा बाद अहाँ अपन हामी भरबै। अगर ओहिमे अहाँ कतौ कोनो दिक्कत हुए तो वहाँ फिर आगा सलाह मशविरा लऽ सकै छी।
0: बिल्कुल, लेकिन बिना
1: आदरणीय स्वर्गीय भगत सिंह के जे लिखल ई शब्दक बुनल जाल थिक, ओ कतौ ने कतौ हमरा लोकनिक लेल प्रेरणा स्रोत थिक। हमरा लोकनिक ई शब्द सँ सीखबाक चाही और ई शब्द सँ सीख कऽ जीवन में आगा बढ़बाक चाही। और फिलहाल हमरा लोकनि अखन

0: नमस्कार मिथिला के आजुक एक अंक में एक डेग और आगा बढ़ाबै छी और नजर राखै छी आजुक दिनक इतिहास पर जे आजुक दिन की खास महत्व राखैत अछि हमरा राष्ट्र में हमरा समाज में हमर जे आकाशवाणी दरभंगा परिवार के श्रोता लोकन छथि तिनका नजर में आ जानकारी साझा कऽ रहल छथि कल्याण कुमार झा।
1: हाँ रंजीत जी, तो आज यानी 24 अगस्त को हमारे इतिहास के आईने में क्या कुछ झलक मिलता है उसकी बात करें तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज है हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। 1690 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई और इसी उपलक्ष्य में आज कलकत्ता शहर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वाराहगिरी वेंकटगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने 1969 ईस्वी में। यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना 1991 में आज ही के दिन। फिलिस्तीनी को अहिंसा का पाठ पढ़ाने अरुण गांधी रामल्ला पहुंचे 2004 ईस्वी में आज ही के दिन। और 2006 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो यानी यम को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। प्लूटो को इस दिन से ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया। 2008 में पेइचिंग ओलंपिक का समापन हुआ, इसमें चीन 51 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। और 2015 में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और कोच चार्ली कॉफी का निधन हुआ था आज ही के दिन। आज के दिन कुछ महान हस्तियों के जन्म की बात करें रंजीत जी, तो बसवराज राजगुरु जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे उनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत का राजा कहा जाता है। और बीना दास 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। राजगुरु जो स्वतंत्रता सेनानी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उनका जन्म आज ही के दिन 1908 ईस्वी में हुआ था। के केलप्पन केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी के साथ ये समाज सुधारक भी थे। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
0: तो बड़ा सुंदर बात अपने कल्याण जी आई अपने हमारा श्रोता लोकन की जानकारी देलहुँ जो आई राजगुरु के सेहो
1: जन्मदिन है,
0: जन्मदिन छनि। तो श्रोता लोकन राजगुरु के जे देश के आज़ादी कराबो में जे अविस्मरणीय योगदान छनि, अतुलनीय योगदान छनि, ओकरा हमरा लोकन कखनो विस्मृत नहीं कह सकै छी।
1: बिल्कुल।
0: और राजगुरु भगत सिंह के समकक्ष छला है और वही केस में हिनको फांसी की सजा सुनायल गेल रहन। आई हुनक जन्मतिथि छन
1: और हमें गर्व है कि हमारे भारत माता
0: गर्व है जो भारत वर्ष में एहनो एहनो सपूत जन्म लेने छलखिन जे अंग्रेज के बेरी के तोड़बा के लेल हंसत हंसत फांसी के कदम चूम लेने छला है। मुदा आइयो हम ओहि समय के थोड़े बात करी छी जे स्मरण करियौ, कने कल्पना करियौ आ कने पोछा जइयौ जे केखन और केहन ओ दृश्य हेतै, केहन ओ समय हेतै जाहि समय में राजगुरु सन सुखदेव सन भगत सिंह लोग के अंग्रेज से लड़बा के लिए कतेक मेहनत और मकसद करल हेतन और अखन आजाद हिंदुस्तान में हमरा लोकन युवा जे छी, युवजन जे छी, युवा के देश भारत छे, ओहो युवा के देश भारत रहे जे हरेक युवा अपन देश के आजादी के लिए अपन गर्दन तक कटबा के लिए तैयार रहे। आइयो भारत आजाद छे, आइयो भारत युवा छे, आइयो भारत में बहुत युवक लोकन छथिन, लेकिन आइ भारत कतौ जा रहल छे, आइ के भारत के युवा कतौ जा रहल छे, की भ रहल छे, कतौ ने कतौ ई बड़ा सोचनीय बात छे। आइ इहो हमरा कहो में कोनो आता ते ई नहीं भ रहल है, झिझक नहीं भ रहल है कल्याण भाई कि आइ बहुत रास कम लोग के पता हेतन जे आइ राजगुरु जी सन महान व्यक्तित्व ध्वनित्व कृतित्व वाला लोग के आइ जन्मतिथि छन। हमरा लोकन आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से हुनका श्रद्धांजलि दैत छियनि, हुनकर अविस्मरणीय योगदान के आइ अपना लोकन फिर एक बेर स्मरण करै छी और
1: नमन करै छियनि
0: और कार्यक्रम में एक डेग आगा और बढ़ाबै छी चूँकि कार्यक्रम में समय सीमा के प्रबंधन अछि। हाँ, चर्चा परिचर्चा हमरा लोकन आगा सेहो करब, मुदा ताहि सँ पहिले हमरा लोकन सबसँ पहिले एकटा समसामायिक मैथिली गीत सुनै छी। और मैथिली गीत में चूँकि आइ सावन के पावन महीना के अंतिम सोमवारी थी, ई महाद्वक चरण में समर्पित सुंदर सन
1: राधा मोहन मिश्र
0: के आवाज में।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: मालकनी मैथिली गीत सुने जैकि महेश वाणी छल राधा मोहन मिश्र के आवाज में समसामयिकीन आज सावन के पावन महीना की अंतिम सोमवारी थी तो

0: निश्चित तौर पर हम कल्याण भाई उम्मीद करै छी कि श्रोता लोकनि के समसामयिक मैथिली गीत नीक लागल हेतनि। आओर बहरहाल कार्यक्रम में हमरा लोकनि एक डेग आगा और बढ़ैत छी
1: और अगले पायदान पर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल हालचाल लेकर उपस्थित हैं रंजीत कुमार झा।
0: धन्यवाद कल्याण, नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 4 साल से कम उम्र वाला बच्चा के लिए क्लोरोफेनामिटाइन मेलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाला 100 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि निश्चित खुराक संयोजन वाली दवाई के निर्माण बिक्री और वितरण पर पूर्णतया रोक लगा दिलक अछि। राज्य सरकार सबके सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत 25 अगस्त का राज्य के 144 गो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में विद्यार्थी सहयोग शिविर के आयोजन करत, जाहि में राज्य भर के छात्रावास के एगो साक्षा मंच से जोड़ल जाए। छात्रावास में पढ़ाई से जुड़ल परेशानी, रहबा के व्यवस्था से संबंधित समस्या और शिक्षा व्यवस्था के बेहतर बनाब के सुझाव देवा के लिए विद्यार्थी के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाब पड़ते, ऐ सहयोग शिविर से सबटा समाधान हुनका भेट जतन। बिहार के ग्रामीण इलाका में मोबाइल नेटवर्क के वास्तविक स्थिति जानवा के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के ओर से सर्वेक्षण कराओल जाए। एकरा तहत राज्य के 8,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघर में तैनात करीब 15,000 ग्रामीण डाक सेवक गांव के मोबाइल नेटवर्क के गुणवत्ता के सर्वेक्षण करता। इस सर्वेक्षण अपन दैनिक डाक वितरण कार्य के दौरान ककर सर्वेक्षण उद्देश्य बिहार के दूर दराज गाँव के एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, VSNL के नेटवर्क के सेवा के स्थिति के पता लगेनाई अछि। एकरा तहत नेटवर्क के ब्लैक स्पॉट, इंटरनेट के गति, कॉल के गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसन अनेक समस्या के जानकारी जुटा के ओकरा समाधान करबा के दिशा में अगला कदम बढ़ाओल जाए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ल संस्था के लिए राज्य सरकार बेहद सख्त रुख अपनाबे जा रहल अछि। राज्य सरकार सब संबंधित शैक्षणिक संस्थान के जांच करबाक फैसला लेलक है। योजना के तहत सूचीबद्ध निजी शिक्षण संस्थान के भौतिकी जाँच सेहो कराओल जाए। शिक्षा विभाग सब संबंधित संस्थान, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करवा के लिए 26-27 के मद्देनजर आधारभूत संरचना और सत्यापन के स्थिति करा दिलक है। संस्थान के नैक से न्यूनतम ग्रेड सी, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क और NIRF के वर्किंग रैंकिंग के अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के मान्य पाठ्यक्रम के संचालित करवा के दिशा में आवश्यक पहल करवा के लिए कहल गेल है। बिहार लोक सेवा आयोग के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत अंकेक्षण सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिल गेल है। परिणाम आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिल गेल है। परीक्षा में कुल 1,248 गो उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कैल गेल है। परीक्षा में सामान्य वर्ग के कट ऑफ सबसे अधिक 92 अंक मानल गेल छल। श्रेणी वाइज सफल अभ्यर्थी में आरक्षित कोटि के 702, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 138, अनुसूचित जनजाति के 148, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 105, पिछड़ा वर्ग में 105 और ओतहि महिला कोटि के 39 गो अभ्यर्थी शामिल छथि। दिव्यांगता के आधार पर देय क्षितिज और आरक्षण के कुल 35 गो अभ्यर्थी सफल भेला है। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, नाती नतनी, पोता पोती के कोटि के 20 गो अभ्यर्थी सेहो शुरू भेला है। ई ग्राम कचहरी व्यवस्था में लागू होबो से डिजिटल के माध्यम से छोट छोट विवाद सुलझाएल जाए। पंचायती राज विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से अखन तक ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर दर्ज मामला में 38,000 से बेसी वाद के सफलतापूर्वक निगरानी और ओकर निराकरण कैल गेल है। बिहार राज्य गन्ना किसान मोर्चा के गन्ना मूल्य 750 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करवा के मांग कैल गेल है। मोर्चा मुख्यमंत्री, गन्ना उद्योग मंत्री, गन्ना सचिव और ईख आयुक्त के इस संबंध में पत्र और ईमेल पठौलन है। मोर्चा के अध्यक्ष अशोक प्रसाद सिंह, महासचिव आनंद किशोर कहलन कि मोर्चा के मांग के संगे खेती के लागत के ब्यौरा ओकर भरपाई करत। स्वाभिमान आयोग रिपोर्ट के अनुसार लागत के ड्योरा दाम देनाई सुनिश्चित कैल गेल है। वो कहलन कि आई गन्ना के उत्पाद बनाएल जा रहा है छे, जखन कि वाजिब दाम नहीं भेटवा के कारण किसान ऐसा अपन मुँह से हो मोड़ रहल छथि। जिलाधिकारी दरभंगा के कौशल कुमार के अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पताल की सूचीबद्ध कैल जवा के लिए

0: जिला के स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ करवा के लऽ कऽ एगो समीक्षात्मक बैसार के आयोजन कयल गेल। जिला अधिकारी विशेष रूप से निर्देश देलनि कि सदर अस्पताल गंगवारा में सीजेरियन डिलीवरी, ऑर्थोपेडिक, सामान्य सर्जरी सहित अन्य आवश्यक सर्जिकल सुविधा उपलब्ध कराबों के दिशा में आवश्यक कार्रवाई कयल जाए ताकि मरीज के स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार भेट सकें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के संग कार्य करैत अस्पताल के स्वास्थ्य सेवा के गुणवत्ता और उपलब्धता पर निरंतर सुधार सुनिश्चित करवा के निर्देश जिला अधिकारी के द्वारा देल गेल। ई हालचाल अपने लोकनि अखन आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छी।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: दरभंगा में राष्ट्रीय स्तर के आईटी कंपनी अपन शाखा खोलत, ऐ सं मिथिला के युवा के लेल रोजगार और तकनीकी के अवसर सृजित हैत। ई बात दरभंगा के सांसद सह लोकसभा के भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कार्यालय में देश के सौ नामी सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचार सँ जुड़ल उद्यमी के संगे बैसार कला के बाद कहलन है। सिंहवाड़ा और सिमरी थाना में गोद लेवा के बाद निरीक्षण के लेल पहुँचला डीएसपी शशिभूषण सिंह पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय बनाबे पर जोर देलनि। थाना के कार्य प्रणाली और क्षेत्र के विधि व्यवस्था के जानकारी सेहो लेलनि। निरीक्षण के दौरान डीएसपी थाना के विभिन्न अभिलेख, लंबित कांड, अनुसंधान के प्रगति, वारंट और गिरफ्तारी के स्थिति के जानकारी लेलनि। ओ लंबित मामला के शीघ्र निष्पादन करवाक अध्यक्षता और लंबित मामला के त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवा के दिशा में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के आवश्यक निर्देश दिलें। ईवीएम और वीवी पैट वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार कैलन। ओ समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवी पैट वेयर हाउस के बाहरी निरीक्षण कैलन। संगे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अव्यवस्थित ईवीएम और वीवी पैट वेयर हाउस के बाहर के गोदाम के स्थिति के सेहो अवलोकन कैलन। सुरक्षाकर्मी के सख्त निर्देश देल गेल कि वेयर हाउस के बाहर लगाओल गेल निगरानी करनाय सुनिश्चित कयल जाए। मौका पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार और पुलिस पदाधिकारी सेहो उपस्थित छलाह। जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में जिला के अंतर्गत नदी में जाम, गाद और बालू के सर्वेक्षण के लऽ कऽ समीक्षात्मक बैसार आयोजित कयल गेल। जिला में विभिन्न नदी में उपलब्ध सिल्ट, गाद और बालू के स्थिति, ओकर सर्वेक्षण और नियमानुसार उपयोग के संभावना पर विस्तार सँ विचार विमर्श कयल गेल। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी कहलनि कि एम्स निर्माण में कार्य के मिट्टी भराई के लिए आवश्यक मिट्टी के उपलब्धता सुनिश्चित करवा के लिए संवेदक के द्वारा नियमानुसार खनन योजना तैयार कैल जाए। राज्य गुणवत्ता नियंत्रक SQM के टीम मनसारा गांव के पास बन रहल 75 मीटर लंबा उच्च स्तरीय RCC पुल के निर्माण में लागल मटेरियल के जाँच कैलन। ओ पुल निर्माण में लगाओल गेल मटेरियल के किछु नमूना संग्रहित कऽ कऽ अपना संगे लऽ गेला। SQM बांके बिहारी मिश्र के नेतृत्व में अतः पहुँचल टीम के सदस्य RWD विरोल के अभ्यंता के देख रेख में आई हाई लेवल ब्रिज के डिजाइन के निरीक्षण कयल गेल। स्थानीय CHC में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विविधाकानंद झा के अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति और ग्रामीण स्वच्छता समिति के संयुक्त रूप से बैसार कयल गेल।

0: बैठक के अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्षता में कैल गेल। बहिणी के विधायक सह बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ एनडीए के सचेतक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी समधपुरा पंचायत में सोमा गांव में पीसीसी सड़क के लोकार्पण कैलन। ओतय ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी बिरोल थाना के वार्षिकी निरीक्षण कैलन। ओहिसे थाना में संधारित पंजी मालखाना हाजत सुरक्षा चार्जशीट स्टेशन डायरी समेत अन्य अभिलेख के जांच सेहो कैलन। संगहि हत्या लूट डकैती जैसन संगीन आपराधिक घटना और लंबित मामला के लोक कतेको आवश्यक निर्देश दिलन। थाना अध्यक्ष के आपराधिक प्रवृत्ति के लोक के पर ऊपर कड़ा नजर रखबा के लिए निर्देश दिल गेल। अही के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि संपन्न होते। नमस्कार।
1: और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद कोनो श्रोताओं को जानकारी दे दें मौसम पूर्वानुमान की।
0: जी जी
1: श्रोताओं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी

0: नमस्कार।
1: और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद कौन श्रोताओं को जानकारी देने मौसम पूर्वानुमान की।
0: जी जी
1: श्रोताओं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 22 से 26 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि बेगूसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर 25 से 26 अगस्त के आसपास गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। इस अवधि में कुल 45 से 65 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो लगभग 85% तथा दोपहर में 50 से 55% के बीच सापेक्षिक आर्द्रता रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में हवाएं मुख्यतः पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान।
2: जो हमारे को बात करी यातायात संबंधी की जानकारी भी है, तो श्रोता लोग अपने के बताबे चली कि यातायात संबंधी के बारे में सड़क मार्ग के अगर हमारे को बात करी तो सड़क मार्ग में जे वन वे सिस्टम पहले से लागू छ आइयो लागू है, उसमें कतौ कोनो फेरबदल के संभावना अखन तक नहीं नजर आबि रहल अछि। हाँ, अगर अखन के बाद ओहिमे कोनो VVIP मूवमेंट के कारण अगर सड़क मार्ग में कोनो परिवर्तन कयल जाए तकर जानकारी अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाए। जो बात करी हम रेलवे सफर के लेल, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जाहि गाड़ी के जे आगमन के समय अछि और जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय अछि ओहिमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कयल गेल है। ओ अपना समय से गाड़ी खुजत और अपना समय से गाड़ी के आगमन है। जो हमारे लोग हवाई सफर के बात करी तो हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से जे ओहिठमन से जे प्राप्त जानकारी है तकरा मुताबिक जे विमान के संचालन के समय अछि ताई के समय में कोनो फेरबदल हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से अखन धरि नहीं कयल गेल है। अगर मौसम पर प्रतिकूल असर पड़े तो ओकर असर हवाई संचालन पर सेहो पड़ते तकर जानकारी फिर अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाए। मुदा जो आई हमारा श्रोता लोकन के कतौ सफर करबा के योजना होए, कार्यक्रम होने, प्लान बनल होए तो तीनू जे माध्यम है अपना शहर में तीनू माध्यम से जो कोनो माध्यम से अपने के सफर करबा के योजना बनल हुए तो ओहिठमन का जे इंक्वायरी नंबर आम जनता के लेल देल गेल छे ओहि इंक्वायरी नंबर पर एक बेर अपने लोकन क्वेरी कऽ ली, ओकरा बाद अपन सफर के शुरुआत करी। और कल्याण आजुक नमस्कार मिथिला के अंक के सफर के शुरुआत आगाज तो भ गेल अछि, मुदा आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमरा लोकन के अब समय भ रहल अछि किएक कि सबसे पहले एक श्रोता लोकन के लिए एक फिल्म संगीत के आनंद हमरा लोकन ली, ओकरा बाद फिर अपना कार्यक्रम में वापस आयब और अपना कार्यक्रम के जे परिपाटी है, जे रूपरेखा अछि ताहि अनुसार कार्यक्रम के संचालित होयत। मुदा ताहिसँ पहले सबसे पहले सुनै छी सुंदरसन फिल्म संगीत।

0: जो गीत नहीं जन्मा, ये फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। और रंजीत जी, जैसा कि आज हमने सुविचार इतिहास के माध्यम से हमने श्रोताओं को जानकारी दी थी कि आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी शिवराम हरिराजगुरु का जन्मदिन है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, शिवराम हरिराजगुरु इनका पूरा नाम था। 24 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनका निधन हुआ था। निधन क्या कहें, उनको जबरदस्ती फांसी पर ब्रिटिश शासन द्वारा चढ़ा दिया गया था।
1: देखियो, अगर हम लोग सच्चाई के अगर खुद भी कल्याण बाबू तो उनमें ब्रिटिश ही सरकार के हाथ नहीं रहें, ओहिठमन जे भारत के आज़ादी नहीं चाहत रहें और परोक्ष रूप से हुनको लोकन के हाथ रहें जे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी नहीं रुकें।
0: बिल्कुल,
1: फांसी भ जाए। इतिहास में भले ही नहीं पढ़ाओल गए लेकिन हम लोग हकीकत जानी चाहिए और हकीकत बयां करो में हमारा कतौ कोनो तकलीफ नहीं है।
0: बिल्कुल, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे शिवराम हरिराजगुरु। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। इनके जन्म और निवास की अगर विस्तृत जानकारी की बात करें तो शिवराम हरिराजगुरु का जन्म भाद्रपद यानी भादव के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी संवत 1965 विक्रम संवत 1965 और उसके अनुसार 1908 में पुणे जिला के खेड़ गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाने से ये बहुत छोटी उम्र में ही वाराणसी विद्याध्ययन करने एवं संस्कृत सीखने आ गए थे। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कम आयु में कंठस्थ कर लिया था इन्होंने। इन्हें कसरत यानी व्यायाम का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के ये बड़े प्रशंसक थे। वाराणसी में विद्याध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आज़ाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ के छद्म नाम से जाना जाता था। आज़ाद जी की जो पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उससे जुड़ने के बाद राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु का एक छद्म नाम पार्टी के अंदर दिया गया जो रघुनाथ राजगुरु के नाम से नहीं जाना जाता था पार्टी के अंदर। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और यतीन्द्र नाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। सैंडर्स का वध करने में इन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव का पूरा साथ दिया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने छाया की भांति इन तीनों को सामरिक सुरक्षा प्रदान की थी।
1: देखिए, एक योजना बनाकर एक कार्यप्रणाली के भारतीय के उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी छला, असली स्वतंत्रता सेनानी छला, वो एक कार्य प्रणाली के एक कार्य के अंजाम देने रहत। और हिनका लोकन के उस समय में छठम इंद्री लोग तो नहीं कहे लोग के काज करे छे, ये छठम इंद्री हुनका लोकन की काज करत रहन। और देखियो, हम ओ करेजा के तो नमन करे छियन कल्याण भाई, और हिंदुस्तान के हरेक ओ नागरिक के ओ करेजा के नमन करक चाही जे अ अल्प आयु में ओ स्टैंडर्ड पर गोली बम चलौलन और जखन हुनका अदालत में फांसी के सजा सुनाओल गेलन तखन हुनका चेहरा पर तनियो लेस मात्र कनियो कष्ट और लेस मात्र हुनका पर सिकन नहीं देखने है बन जे राजगुरु के चेहरा पर चाहे आँख में कनियो ओ झलकन है, डर के दृश्य कखनो झलकन है। हुनकर छाती सजा सुनला के बाद ओ और गर्व से चौड़ा भ गेलन और भारत माता की जयकार ओतो ओर लगबत रहला, ये कतो ने कतो आजुक युवा पीढ़ी के लेल सीख लेवा के प्रयत्न है। हमारा देश में अनेकानेक क्रांतिकारी भेला, अनेकानेक क्रांतिकारी के हमारा लोकन जन्म दिवस मृत्यु दिवस मनाबत छी। देश के लाखों करोड़ों रुपया के बजट के प्राप्त

0: विधान होइत अछि। मंच सँ लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण पढ़ल जाइत अछि। बड़का बड़का फूल के माला क्रांतिकारी के बनाओल गेल जे मूर्ति ताहि पर पहनाओल जाइत अछि, चढ़ाओल जाइत अछि। मुदा हुनकर कृतित्व, हुनकर व्यक्तित्व, हुनकर जे जीवन जिला के आधार छलनि हैं, ओहि आधार के केओ अपनाबऽ के लेल तैयार नहि होइ छथि। की भऽ रहल छै देश मे? आइ के युवा कतौ जा रहल छै? भटकाव के राजनीति के शिकार भऽ रहल छै। आब अहाँ कनी कल्पना करियौ कि ओहि समय मे अगर एहने भटकाव के राजनीति के शिकार सुभाष बाबू, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह होइत छथिन, ताहि देश के की स्थिति परिस्थिति रहितै?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सीख लेबाक हमरा लोकनि के समय अछि कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होइ छै, परिवार हित सर्वोपरि नहि होइ छै, स्वहित सर्वोपरि नहि होइ छै, राष्ट्र हित सर्वोपरि होइ छै। हिन्दुस्तान के लाल, हिन्दुस्तान के माटिक बेटा वएह कहै छै जे हिन्दुस्तान के लेल अपन कुर्बानी दऽ कऽ चलि जाइ छै। कुर्बानियो दू तरहक होइ छै, एकटा होइ छै देखाओ वाला कुर्बानी, एकटा होइ छै सचमुच के कुर्बानी। तऽ जे सचमुच के कुर्बानी दऽ गेल छथि तिनका हम अखनो दिल सँ आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ सँ श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। और जँ कतौ हुनक आत्मा अखनो एहि प्रकृति मे विचरण करैत हेतनि तऽ कहैत छियनि जे हे प्रभु, हे महामानव, एक बेर फेर अपने लोकनि एहि पृथ्वी पर एहि प्रकृति मे अवतरित होइयौ। और युवा जे हमर दिग्भ्रमित भऽ गेल छथि, अपन रास्ता भटकि गेल छथि, ओ ककरो कहबै पर जे छै से अपन रास्ता बदलि लै छथि, हुनका के लेल थोड़े हुनकर आत्मबल दियौन, दृढ़ इच्छा शक्ति दियौन, जे ओहि देश के लेल अपन राष्ट्रहित सर्वोपरि के सिद्धांत के अपनाबैत। और नमस्कार मिथिला काजुक अंक में हमरा लोकनि एक डेग और आगा बढ़ै छी, एकटा और फिल्म संगीत के आनंद लै छी, ओकरा बाद फेर श्रोता लोकनि से हमरा लोकनि बातचीत करब।

0: कोरा कागज था ये मन मोरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। वास्तव में ये दिल जो है वास्तविक रूप से खाली ही रहता है, कोरा ही रहता है, और कभी किसी के साथ, वो चाहे हम अपनी प्रियतमा की बात करें या हमारे अभी जो चर्चा किया गया राजगुरु की, तो वास्तव में यह राजगुरु हमारे हृदय में इसी तरह, मेरा दिल तो कोरा कागज़ था लेकिन हृदय में इसी तरह समा गए हैं, उन्हीं का नाम लिखा गया है। क्योंकि सबसे पहले देश तभी हम हैं, अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या रंजीत जी?
1: हाँ देखो, निश्चित तौर पर देश तखने रहते जखन अहाँ के संस्कृति रहत। स्वामी विवेकानंद कहने रहते कि अगर कोनो देश के ऊपर अहाँ के आक्रमण करवा के या ओकरा ऊपर कब्जा करवा के, तो सबसे पहले ओकर जो संस्कृति परम्परा छै तकरा पर अहाँ चोट करियौ।
0: बिल्कुल।
1: और आइ के हिन्दुस्तान में वो भ रहल अछि। आइ जे हमर संस्कृति सभ्यता छल भारतवर्ष के, ओहि पर कतौ ने कतौ आघात भ रहल अछि। कहबाक लेल तऽ कल्याण भाई हमरा लोकनि भारतीय छी, लेकिन हमर पहिनावा ओढ़ावा चाल चलन वेशभूषा खान पान हमर रूटीन दिनचर्या अगर अहाँ ओकरा देखबै और भारतीयता के संस्कृति परम्परा के देखबै, तऽ ओहिमे अहाँके कतौ मेल खाइत नहि नजर आबैत अछि।
0: बिल्कुल रंजीत जी, भारतीय समाज में पढ़ने की संस्कृति भी आदिकाल ही से जीवंत है। वास्तव में पढ़ने की संस्कृति
1: जाहि समय में कल्याण भाई शिक्षा के नाम पर स्कूल और विद्यालय महाविद्यालय के परिचर्चा और कल्पना तक नहीं पूरे विश्व में कैल जाते रहे, ओहि समय में हमारा भारत में कतेको दून हजारों गुरुकुल चले छो, जे गुरुकुल में सब तरह विद्या शस्त्र और शास्त्र दुनू विद्या के ओत जैसे अध्ययन अध्यापन कैल जाए छल की है। बचपन में बच्चा अपन घर से 5 बरस 7 बरस के अवस्था में निकल जाए छला है और गुरुकुल में 17 साल 18 साल रहला के बाद वो सब विधा में पारंगत भ कर अपन घर वापसी करे छला है।
0: बिल्कुल।
1: और ओ विद्या में अत गुरुकुल आई के डेट के लोग के गुरुकुल कहे छे सुने छथिन तो हुनका थोड़े अचंभित लगे छिन जे गुरुकुल होइ छले, गुरुकुल के पढ़ावा एनावा एहन होइ छले, पढ़ाई एहन होइ छले, विज्ञान लोग पढ़ कर विमान बनाबे छथि, केओ रक्षा उपकरण बनाबे छथि, लेकिन हम आइ सब गोटे के बताबऽ चाहिए कि गुरुकुल में सेहो विमान शास्त्र के परीक्षा होइ छलै। गुरुकुल में 100 नहीं 100

0: 150 विषय सॅं बेसी के विषय के पढ़ाई गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन कयल जाय छलैय। जतेक विषय के पढ़ाई आय हमरा ओहिठमन यूनिवर्सिटी में नहीं करायल जाय छै, ओहिसँ बेसी विषय के पढ़ाई ओहि समय में गुरुकुल में होइत छलै।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन गुरुकुल कतौ ने कतौ खत्म भऽ गेलै। आब जे केओ एहन केने होय, संस्कृत शिक्षा बोर्ड आइ धरातल के ओर चलि जा रहल छै, ओतै मदरसा बोर्ड के देख लियौ। तऽ ई जे परम्परा उठलै, कतौ ने कतौ ई परम्परा सॅं हमरा लोकनि के बचक चाही। राष्ट्रीयता हमरा लोकनि के हमरा याद आबि रहल अछि कल्याण भाई जे कतौ ने कतौ कोनो सम्भाषण मे वाजपेयी जी कहने रहथिन कि भारत के स्थिति तऽ आब ई भऽ गेलै जे धर्मांतरण तऽ छोड़ि दिअ, आब भारत के लोग राष्ट्रांतरण भी कऽ रहल छथि।
1: बहुत ही गुड़ बात थी।
0: भारत के लोग राष्ट्रांतरण भी कऽ रहल छथि, जाहि राष्ट्र बचाबऽ के लेल सैकड़ों आदमी अपन कुर्बानी जान के दऽ देलनि, ओहि देश के लोग राष्ट्रांतरण पर आमदा भऽ गेला है। तऽ कतौ यहाँ के राष्ट्रीयता, ई गौर करऽ वाला बात छिके।
1: बिल्कुल, ये हम सभी को गौर करने की बात है। और इसके जो भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में विभिन्न
0: जल जंगल जमीन ये हमार पहचान छल। आई जल जंगल जमीन के की स्थिति है अहाँ देख लियो। हम अहाँ मिथिला के क्षेत्र में छी, पानि के सबसँ स्रोत वाला क्षेत्र में हमरा लोकनि छी। हमरा लोकनि किछु हुए चाहे नहि हुए, पानि के सबसँ पैघ धनिक हमरा लोकनि मानल जाइ छनि उहे। लेकिन आइ हमरा मिथिला में 20 रुपए लीटर पानि बिका रहल अछि, जबकि हम पानि के धनिक छलहुँ हैं। तखन ई स्थिति,
1: समय समय की बात।
0: तऽ जल जंगल जमीन के अहाँ देख रहल छी, जंगल के कटाई धंधा धुंध केना भऽ रहल छै। प्रकृति के बचाबक लेल हमरा लोकनि सब दिन आकाशवाणी के स्टूडियो सॅं बैस के जनता लोकनि सॅं श्रोता लोकनि सॅं अपील करै छी जे प्रकृति के बचाउ, जल के बचाउ, पेड़ के बचाउ। किएक तऽ इएह प्राकृतिक चीज, अइ प्रकृतिक के श्रृंगार छियै। इएह गाछ वृक्ष जल जंगल जमीन पहाड़ नदी नाला ई सब जे छै से अइ प्रकृति के श्रृंगार छियै, प्रकृति के आधार छियै। तैं एकरा बचेनाइ सबसँ पैघ जरूरी अछि, आओर सब ओहूसँ जरूरी अछि कल्याण भाई जे आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमारा लोकनि के घड़ी के सोई टिक टिक कऽ कऽ इशारा कऽ रहल अछि जे श्रोता लोकनि सब विदा ली। तऽ श्रोता लोकनि राजगुरु के श्रद्धांजलि दैत दैत जल जंगल जमीन के बचाबऽ के लेल सब गोटे के अपना अपना दिशसँ 100% प्रयास करबाक चाही। एहि शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला कंक सॅं हमरा लोकनि लैत छी विदा। नमस्कार
1: मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
5: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि

0: शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। होर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश

0: से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराई कुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कावड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में

0: वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्ता का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें? तो ये जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें? तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द 2-डे 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces

0: Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप पर जोर दिया है कि वो अपनी कोशिशों में इस्तेक़लाल को बरकरार रखें और खलाई शोबे का एक मजबूत इको निज़ाम तश्कील दें जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता हो। जनाब मोदी ने ये बात हाल ही में 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs और बानी अफराद के साथ बातचीत के दौरान कही। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने खलाई तहकीक के निजी शोबे पर जोर दिया कि वो जिद्दत तराजी की एक आलमी शनाख्त कायम करे ताकि दुनिया भर के लोगों को ये महसूस हो कि अगर वो खलाई शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना चाहिए।
2: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि लागत के लिहाज से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और यहाँ खतरा मोल लेने की मजबूत सलाहियत रखने वाले बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन दोनों खूबियों का इम्तिजाज भारत को आलमी सतह पर खलाई शोबे में तेजी से एक नुमाया मुल्क के तौर पर खुद को कायम करने की सलाहियत फराहम करता है।
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में होगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के 850 से ज्यादा अफसरान मौजूदा मुख्तलिफ मसायल पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों पर भी गौर खोज किया जाएगा। इस सालाना कलीदी नौयत की कॉन्फ्रेंस से दाखिली सलामती, सरहदी इंतजाम और उभरते हुए खतरा से मुतालिक इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस क्यादत के दरमियान तालमेल कायम किया जा सकेगा। 2016 में DGP और IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और पुलिस सरबराहान को ہدایت دی تھی کہ وہ ہر سال NSSC کا انعقاد کریں۔

0: इसका मकसद ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी के अहम कौमी चैलेंजों का हल तलाश किया जा सके। मुतल्लिका माहरीन के इश्तराक से ज़मीनी सतह पर काम करने वाले जदीद सतह के अफसरान के ज़बरदस्त तजर्बे को बरूए कार लाया जा सके। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वज़ीर आज़म डेनिस मोंत्रो के साथ तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन IRIGC टेक से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हम मनसब सरगई लावरूव के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई व बैन अक्वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल मास्को पहुंचे थे। वह रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंत्रोव की दावत पर रूस का दौरा कर रहे हैं। रूस और भारत के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान वक्त की कसौटी पर खरी उतरने वाली शराकत दारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस कलीदी शराकत दारी से मुतालिक एलामिये पर दस्तखत के बाद से सियासी, सिक्योरिटी, दिफा, तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकावत और आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत तकरीबन सभी शोबों में ताउन की बढ़ती हुई सतहों के साथ भारत रूस ताल्लुकात ने एक जदीद और मयारी शक्ल इख्तियार कर लिया है। कलीदी शराकत दारी के तहत सियासी और सरकारी दोनों सतह पर बहुत से इदारा जाती और मैकेनिकी मुजाकरात होते रहे हैं ताकि मुस्तकिल तौर पर मुजाकरात को यकीनी बनाया जा सके और ताउन की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 18वीं ब्रिक्स तालीमी मुजाकरात कल लखनऊ में शुरू हो गए। भारत की ब्रिक्स सदारत के हिस्से के तौर पर ये तालीमी मुजाकरात मंगल तक जारी रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इत्तला के निज़ाम RIS और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फोरम के कन्वीनर्स हैं। लचक, इख्तिरा और पायदारी को कायम करने के मौजू के तहत ये फोरम ब्रिक्स मुल्कों के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, माहिरीन और पॉलिसी साजों को यकजा कर सकेगा ताकि अहम आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा सके और ताउन को मुस्तहकम करने के लिए अमली पॉलिसी से मुतालिक तौर तरीकों पर भी बहस व मुबाहसा किया जा सकेगा। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के इलूरु ज़िले में वाक़ गांव मनसुनुरु का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मनसुनुरु में भारत के पहले गैर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा आला तोसी मकई के हाइब्रिड बीज का इफ्तिताह करेंगे। वो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद और दीगर शुरका से खिताब भी करेंगे। बिहार सरकार ने रियासत के इम्तिहान के निज़ाम में जामे इस्लाहात के लिए 5 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। ये कमेटी 3 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी पेपर लीक, पेपर की नकल, इम्तिहानी मराकज पर बदउनवानी, जवाबी कापियों में छेड़छाड़ और नतायज में गैर मजाज मुदाखलत को रोकने के लिए इकदामात की सिफारिश करेगी। ये कमेटी इम्तिहान के निज़ामुल औक़ात, सवाल नामे की हिफाजत, जवाबी कापियों की जांच और नतायज के ऐलान के अमल को मज़ीद शफाफ और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरक़ी मध्य प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र और जनूबी कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, मगरबी मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरक के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। शुमाली खलीज बंगाल और मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के मुलहिका साहली इलाकों के ऊपर बनने वाला हवा के दबाव का हल्का शुमाल मगरब की जानी बढ़ रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: इसके गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए शिमाली उड़ीसा की जानब बढ़ने का इम्कान है। इसके नतीजे में आज झाड़ग्राम और पुरुलिया ज़िलों में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। मशरकी मिदनापुर और जनूबी 24 परगना ज़िलों में गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की पेशगोई की गई है। माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है।

0: कोलकाता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाज़ों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करना होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिक शिकों का अहाता करेगी। सरकारी नशरे के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ेकार नरम माली शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने बताया कि आबनाए हुरमुज बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के अपने वादों को पूरा नहीं करता। और ईरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर देते हुए कि आबनाए हुरमुज अमेरिका का नया इलाका है, इस अहम आबी गुजरगाह पर अमेरिकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 27वीं तारीख तक जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओकासा जाएंगे। जापान जाने वाला भारत का ये सबसे बड़ा कारोबारी वफद होगा। इस वफद में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, साफ तवानाई, माली खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप्स, स्टील और ऑटोमेटिव शोबों के 200 से ज़्यादा कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। आज पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर झारखंड में बड़े पैमाने पर मजहबी तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद बड़े शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, जहां वो बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने खसूस इंतजाम किए हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए निगरानी, AI कैमरों और एक डिजिटल हेल्पलाइन का इंतजाम शामिल है। दुमका के बाबा बसुकीनाथ मंदिर में भी सावन के मेले के आखिरी सोमवार के दिन वसी सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू पाने के इंतजाम किए गए हैं। रांची में अकीदतमंद दरमियानी शब से तारीखी पहाड़ी मंदिर का रुख कर रहे हैं। ग्रीटी के झारखंड धाम और रियासत भर के दिगर शिव मंदिरों में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जल अभिषेक को पुरअमन और महफूज तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। रांची से महफिश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: तिब्बी तहकीक के भारतीय कौंसिल ICMR ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, कि किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अभी मौसर है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज़्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। कबायली उमूर की वजारत कर्नाटक के मैसूरु में आज से बुध के रोज़ तक कबायली ज़ुबानों और म्यूज़ियम से मुतालिक एक 3 रोज़ा कौमी कॉन्क्लेव का एहतमाम करेगी। ये कॉन्क्लेव कबायली ज़ुबान की हिफाजत और महफूज रखने के साथ साथ उनके दस्तावेजी सबूत बरकरार रखने से मुतालिक कौमी मुज़ाकरात को यकजा करेगी। शतरंज में भारत के 19 साल ग्रैंड मास्टर परनेश एम हंगरी के नाग कांजिसा शहर में पुरवकार कांजिसा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। परनेश ने सफ़ेद मोहरों के साथ खेलते हुए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में जर्मनी के वेदिम पेत्रोविस्की को शिकस्त दी। हंगरी में भारत के सफारतखाने ने परनेश की शानदार कामयाबी पर उनकी सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई स्टार्टअप्स के बानियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सफाई अव्वल पर शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत का खला से मुतालिक शोबा नुमाया तौर पर वसी हुआ है और ये सेक्टर जामे इको निज़ाम तश्कील देने का अहल है। रोजनामा प्रताप ने भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर के इस बयान को नुमाया किया कि भारत अमरीका आज़ाद तजारती माहिदा FTA हतमी मरहले में, भारत हमारे लिए इंतहाई अहम मुल्क है। इसी अखबार की एक और खबर है, तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल 200 अरकान पर मुश्तमिल तजारती वफद के साथ जापान जाएंगे। ये दो दौरा तिजारत और सनत, मैनुफैक्चरिंग और सेहत खिदमात के लिहाज से इंतहाई अहम होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंगी जहाज़ों, बहरी कश्तियों और उससे मुतालिका शोबों में खुद इन्हिसारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निज़ाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर परनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस एफ के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस एफ और थोड़ा कम है ना। सिंपल, ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
3: खाद्य संरक्षा आयोग, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर, तो आप क्या करेंगे?
5: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
4: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में,
5: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
4: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना।
6: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य को दे आकार।
4: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
6: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री के लिए किसानों को मिलेंगे 4 विकल्प, सहमति को दी जाएगी प्राथमिकता। और आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और इससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को

0: देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। श्री चौधरी ने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फरक्का बराज के सभी गेट खोलने से नदी के जल प्रवाह को सुगम बनाने और बिहार में बाढ़ के खतरे को टालने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के सभी प्रमुख घाटों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पटना सिटी में महावीर घाट और भद्र घाट के पास रिवर फ्रंट और संपर्क पथ पर भी पानी चढ़ गया है। मनेर के दियारा क्षेत्र के कई गांव में पानी फैलने से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। वहीं दानापुर के दियारा क्षेत्र में भी नदी का पानी फैल रहा है। इस बीच आयोग ने बताया है कि प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने लगी है। इससे अगले दो दिनों में पटना में भी गंगा के जलस्तर में आंशिक गिरावट आने की संभावना है। इधर गंडक, कोसी, घाघरा और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भागलपुर में गंगा में आई बाढ़ को देखते हुए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए विक्रमशिला सेतु पर यातायात बंद करने का निर्णय 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अब 28 अगस्त की रात से यातायात बाधित करने का निर्णय फिलहाल स्थगित रहेगा। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: समिति गठन के 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। इसके दायरे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और तकनीकी प्रवेश तथा पात्रता और प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी। समिति प्रश्न पत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और परिणाम में अनधिकृत हस्तक्षेप रोकने के उपाय सुझाएगी। साथ ही परीक्षा कैलेंडर, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध आने पर भी जोर दिया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा के उपयोग की भी समीक्षा की जाएगी। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना से राज्य के 700 मॉडल विद्यालयों में बिहार विद्या साथी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 24 घंटे और 7 दिन मुफ्त ऑनलाइन शिक्षकों की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पसंद के शिक्षक से पढ़ सकेंगे और पढ़ाई से जुड़ी शंकाओं का तत्काल समाधान प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया में किसानों की सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमीन लेने के 4 विकल्प तय किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहले विकल्प के तहत लैंड पुलिंग के जरिए जमीन लेने का प्रयास होगा। इसमें विकास के बाद 55% जमीन किसानों को वापस की जाएगी। दूसरा विकल्प आपसी समझौते का होगा, जिसमें अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो FAR हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी TDR और विकास शुल्क में छूट जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। तीसरे विकल्प के तहत सहमति नहीं बनने पर भूमि खरीद या नियमों के तहत अधिग्रहण किया जाएगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए ली गई जमीन वापस नहीं की जाएगी। वहीं तीनों विकल्पों पर सहमति नहीं बनने पर लैंड पुलिंग, समझौता, खरीद और अधिग्रहण को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। समाचार कक्ष से कुमार अभिषेक।
0: राज्य में असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम CCA में संशोधन के बाद अब 7 तरह के गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर CCA लगाया जा सकेगा। इसके दायरे में सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा या उसे भारी नुकसान पहुंचाने, पेपर लीक और संगठित कदाचार

0: भ्रष्टाचार, अवैध खनन, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने, सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर घृणा फैलाने, मानव तस्करी तथा विस्फोटक और हथियारों के अवैध कारोबार में शामिल लोग आएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि माटी कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए 3 महीने के भीतर माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। श्री चौधरी पटना में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में शत्रु संपत्ति की तलाश और उसका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल राज्य के 13 जिलों में 197 शत्रु संपत्ति होने की जानकारी मिली है। इन जिलों में पटना, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सीवान और वैशाली शामिल हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है।

0: सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ताधाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान, अररिया के मदनेश्वर शिवधाम और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में दक्षिण बिहार में कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 24 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। साथ ही समस्त दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं गया जी जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विमर्श शिविर में शिक्षा, सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। राजगीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू कराने का संकल्प लिया गया। पार्टी ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने, स्वतंत्र बिहार राज्य शिक्षा आयोग गठित करने और हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने की मांग की। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने और बिहटा हवाई अड्डे का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। देश की आजादी के

के सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिहार के युवा क्रांतिवीर अमर शहीद रामफल मंडल के बलिदान दिवस पर कल उन्हें प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में अमर शहीद रामफल मंडल की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया गया। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर के झपा उदन इलाके में निर्माणाधीन मकानों को तोड़े जाने के मामले में पुलिस ने बेलसंड से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार विधायक के निजी कार्यालय से एक अवैध पिस्तौल, 9 कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मौके से बेलसंड निवासी छोटू यादव और नन्हे सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग हादसों में डूबने से 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सीवान में 3, मोतिहारी और पटना में 2-2 युवकों की मौत की खबर है। वहीं समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में पानी भरे गड्ढे में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फरार वार्ड पार्षद मोहम्मद करमुल्ला अंसारी को सारण जिले के परसा नगर पंचायत क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2024 में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए जाने से जुड़े मामले में की गई है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनालिका नगर के पास पुलिस ने एक कार से 9 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर के हाई सिक्योरिटी PSAP-9 कैंप में एक ट्रांसजेंडर कांस्टेबल अवंतिका सिंधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सहरसा जिले के डरहार थाना क्षेत्र में एक डॉल्फिन मृत अवस्था में पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि डॉल्फिन से तेल निकालने के लिए इसका शिकार किया गया। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का होगा गठन। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के सभी जिलों में अगले साल से रोजगार मिले। प्रभात खबर लिखता है, 130 सेक्टरों में बसाई जाएगी पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। दैनिक भास्कर ने लिखा है, न्याय श्रुति से ऑनलाइन गवाही, जेल से ही होगी आरोपी की पेशी और सजा भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलेगा भाजपा का सेवा संकल्प अभियान। आज अखबार ने लिखा है, पटना में गंगा खतरे के निशान के पार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री के लिए किसानों को मिलेंगे 4 विकल्प, सहमति को दी जाएगी प्राथमिकता। और आसावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

Akashwani at 90. आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

सामईन, अभी आप अनुराधा पौरवाल की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। चलिए अब करते हैं, पहले महफिल सुखन शुरू करने से पहले आज की बात करते हैं। आज हम शीरी लहजा पर बात करेंगे। शीरी लहजा का मतलब मीठा, दिलनशीं और प्यार से बोलने का अंदाज होता है। शीरी मतलब मीठा, खुशगवार, और लहजा का मतलब बात करने का ढंग या आवाज या फिर अंदाज, ऐसा अंदाज जिसमें सख्ती ना हो बल्कि कानों को भला लगने वाला अंदाज हो, बातचीत में मिठास और अपनायत का एहसास हो। बात ऐसी बोलनी चाहिए ये जिसे इस तरह कहनी चाहिए कि सुनने वाले पर अच्छा असर छोड़ जाए। कलीम आजिज का एक शेर है कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। ठीक इसी तरह चाहे कितनी भी बुरी और कड़वी बात हो, उस इस लहजे में इस तरह से कहें कि मारपीट की नौबत ना आए, बल्कि अगर तुम लहजे लफ्ज़ों से वार करते हो तो अगला भी लफ्ज़ों में जवाब देने पर मजबूर हो जाए या फिर खामोश रहकर रह जाए, क्योंकि शीरीन लहजे मोहब्बत भरे अंदाज और मीठी बोलों की खूबसूरती यही होती है कि बुरी और गलत बात अच्छे लहजे में बोलने पर अगले को सोचने पर मजबूर कर देता है और तब तक गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तशद्दुद की नौबत ही नहीं आती है। आम फहम और अच्छी बात अगर आप किसी से रौबदार आवाज में करते हैं और तेज आवाज में या ऊंची आवाज में करते हैं तो सुनने वाले को बुरा मालूम होता है, जबकि शीरीन लहजे में बात करने सुनने वालों पर लुत्फ अंदोज होता है। एक शेर है कि लहजे में शीरीन बयानी से दिल तो जीत लो सभी का, शहरों लहजे की शीरीन बयानी से दिल

0: लो सभी का, जो तलवार से ना हो सका वो प्यार से होगा। एक और शेर है अहमद फराज का कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके हम भी देखते हैं। वो जिसका लहजा है शहद और शक्कर से भी मीठा, इसी के शहर में अब हम घर बनाकर देखते हैं। तो ये है शीरी लहजे की खासियत। चलिए अब अपने अगले प्रोग्राम की जानी चलते हैं और सुनते हैं आज का महफिले सुखन। आज के महफिले सुखन में शामिल होने वाले शायर हैं अंजुमारा और मोहम्मद कसीम अहमद और मोहम्मद सरवर अंसारी, और निजामत करेंगे मोहम्मद कसीम अहमद।
1: सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। हजरात महफिल सुखन यानी स्टूडियो मुशायरे में आप सबों का इस्तकबाल है। आज के इस स्टूडियो मुशायरे में हमारे दरमियान मोहतरमा अंजुमारा औरंगाबाद से तशरीफ़ फरमा है, जनाब मीम सरवर पंडौलवी मधुबनी से, और ये खाकसार मोहम्मद कसीम अहमद रहबर ग्यावी अलमारूफ चोंच ग्यावी। आइए मैं बिला किसी तमहीद के आज के इस स्टूडियो मुशायरे का आगाज़ अंजु आरा के कलाम से करना चाहता हूँ। मैं उन्हें इन दो मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मोहतरमा अंजुम आरा, आप सबों की समात के हवाले अपने कलाम के साथ
2: इरशाद।
3: गजल से काबिल मैं अपने शेरी सफर का आगाज चार मिसरों के साथ करती हूँ, मुलायजा करें।
1: इरशाद।

0: कोई
1: रहे हैं।
0: रिश्ता
1: बेशक
0: नहीं
1: बेशक बेशक,
0: होता
1: बहुत खूब,
0: या
1: वाह वाह वाह
0: नौश,
1: वाह, बहुत खूब।
0: मगर माँ बाप से बढ़कर
1: कोई रिश्ता
0: कोई
1: नहीं होता, बेशक
0: रिश्ता नहीं होता।
1: बेशक बेशक।
0: अब मुकम्मल गजल समाप्त करें।
1: इरशाद।

0: वाह वाह, वो मौसम प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले,
1: प्यार के अब तक सुहाने हम नहीं भूले।
0: वाह,
1: और ये भी शेर देखिए,
0: इरशाद हो, इरशाद।
1: जहाँ पहले किया करते थे बातें बैठ कर हम तुम,
0: जहाँ पहले किया
1: जहाँ
0: करते थे
1: पहले
0: बैठ कर हम
1: किया
0: तुम,
1: कर

0: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब।
1: अच्छा,
2: तेरे भेजे हुए सब खत
1: पुराने
0: हम नहीं भूले। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।

0: शुक्रिया।
1: वाह अंजुमारा साहबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने और एक कलाम से नवाजें।
2: जी जी इरशाद
0: जी, बहुत शुक्रिया। शीश

0: कहाँ शहर में कोई है
1: अब
0: कलंदर जैसा,
1: कहाँ
0: बापू
1: शहर में कोई है
0: कलंदर
1: कलंदर
0: जैसा,
1: जैसा।
0: बापू
1: और ये भी शेर देखें,
0: इरशाद हो।

0: कबूतर का।
1: वाह वाह वाह,
2: कुदरत
1: अच्छा
2: जो
1: मुझको
2: बना
1: कुदरत जो बना
2: देती
1: कबूतर
2: जैसा, अपनी ही कौमी का भाई था सितमगर जैसा।
1: वाह,
2: जिस तरफ देखिए हर समते ही वीरानी,
1: जिस तरफ देखिए हर समते ही वीरानी।

0: क्या कहने हैं, वाह वाह वाह वाह।
1: शहर
2: का मंजर भी है सहराओं के मंजर जैसा। और मक्ते का शेर समझ फरमाएं,
0: इरशाद।
2: गम की सभी नदियां समा जाती हैं मुझे में अंजुम,
0: गम की सब नदियां समा जाती हैं मुझ में अंजुम।

0: जैसा। बहुत शुक्रिया।
1: हजरत अभी अंजुम आरा साहबा अपने कलाम से नवाज रही थीं। आपने महसूस किया होगा कि इनके कलाम में जहां निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी हो रही थी, वहीं भरपूर तगज़्ज़ुल भी आपको सुनने को मिल रहा था। आइए हजरत, अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और रुख करता हूँ मधुबनी का, जहाँ से हमारे दरमियान मीम सरवर पंडौलवी तशरीफ़ फरमा है। मीम सरवर पंडौलवी किसी भी तौर मोहताज तारुफ नहीं है। उसे संगलाख ज़मीन से एक अच्छा शायर उर्दू दुनिया में हलचल मचा रहा है, और इनकी शिरकत मुशायरों में मुशायरे की कामयाबी की जमानत मानी जाती है। मैं जनाब मीम सरवर पंडौलवी को उन्हीं के मतलब से दावत कलाम दे रहा हूँ। सोचा है मैंने काम का पौधा लगाऊंगा, एक दिन तुम्हारे नाम का पौधा लगाऊंगा। जनाब मीम सरवर पंडौलवी, आपकी समाअत के हवाले।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रहबर भाई। अपने शेरी सफ़र का आगाज़ पहले एक मतला, दो तीन शेर।
1: इरशाद।
2: बिल्कुल ताज़ा मतला है। अब कभी तेरे इशारे पे नहीं आऊँगा,
1: अब कभी
2: अब
1: तेरे इशारे
2: कभी
1: पे नहीं
2: तेरे
1: आऊंगा।
2: इशारे पे नहीं आऊँगा, डूब जाऊँगा किनारे पे नहीं आऊँगा।
1: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह।
2: अब कभी तेरे इशारे
1: इशारे
2: पे
1: पे नहीं
2: नहीं
1: आऊंगा,
2: आऊँगा,
1: डूब जाऊंगा
2: डूब जाऊँगा किनारे
1: किनारे पे
2: पे
1: नहीं
2: नहीं
1: आऊंगा।
2: आऊँगा। सैकड़ों बार बुलाकर दिए धोखे तूने,
1: हाँ हाँ हाँ
2: सैकड़ों बार बुलाकर

0: दिए धोखे तूने, मैं कभी तेरे इशारे पे नहीं आऊंगा,
1: वाह वाह वाह,
0: मैं
1: अच्छा है,
0: कभी तेरे पुकारे पे नहीं
1: वाह
0: आऊंगा,
1: वाह वाह, क्या अलमिया आप पेश कर रहे थे भाई,
0: मैं कभी तेरे पुकारे पे नहीं
1: वाह।
0: आऊंगा। मेरी नजरें पसे मंजर भी बहुत देखती हैं, मेरी नजरें पसे
1: पसे
0: मंजर
1: मंजर
0: भी
1: भी
0: बहुत
1: बहुत
0: देखती
1: देखती है,
0: हैं, तेरे खुश रंग नजारे पे नहीं आऊंगा,
1: वाह वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: बात, तेरे
1: वा।
0: खुश रंग नजारे
1: नजारे
0: पे
1: पे
0: नहीं
1: नहीं आऊंगा,
0: आऊंगा।
1: वाह,
0: और दो तीन मुतफर्रिक अशआर
1: इरशाद हो।

0: रंग तेरे खुश रंग नजारे पे नहीं आऊंगा।
1: वाह वाह वाह,
0: तेरे खुश रंग नजारे पे नहीं आऊंगा।
1: वाह।
0: और दो तीन मुतफर्रिक अशआर
1: इरशाद हो।
0: बांटता फिरता है सबको रोशनी कहकर इसे, बांटता फिरता है सबको
1: रोशनी
0: कहकर इसे, शोभदा करने किया है यूं धुआं आरास्ता।
1: वाह।
0: बांटता फिरता है सबको रोशनी कहकर इसे, शोभदा करने किया है यूं धुआं आरास्ता। खुरदरी गजलों पे इसकी क्या भला तौकीर हो।
1: हाँ।
0: खुरदरी गजलों पे इसकी क्या भला तौकीर हो। एक गजल सरवर की कोई है कहाँ आरास्ता।
1: क्या कहने हैं भाई,
0: एक गजल सरवर की कोई है कहाँ आरास्ता। एक मतला और एक शेर
1: इरशाद।
0: जैसा वो नजर आता है वैसा तो नहीं है,
1: जैसा वो नजर आता है
0: जैसा वो नजर आता है वैसा तो नहीं है, शाने पर जो चेहरा है ये उसका तो नहीं है।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह।
0: जैसा वो नजर आता है
1: वैसा तो नहीं है,
0: वैसा तो नहीं है, शाने पर जो चेहरा है ये उसका तो नहीं है। और जिस शेर के लिए मैंने ये मतला पढ़ा कि मैं तीर लिए सोच में बैठा रहा घंटों,
1: मैं तीर लिए सोच में बैठा रहा घंटों
0: दुश्मन की सफों में कोई अपना तो नहीं है।
1: क्या कहने भाई,
0: मैं तीर लिए सोच में बैठा रहा घंटों, दुश्मन की सफों में कोई अपना तो नहीं है। शुक्रिया रहबर भाई। और एक मतला और चंद शेर
1: इरशाद।
0: सोचा है मैंने काम का पौधा लगाऊंगा, सोचा है मैंने काम का पौधा लगाऊंगा, एक दिन तुम्हारे नाम का पौधा लगाऊंगा, एक दिन तुम्हारे नाम का पौधा लगाऊंगा। तुम जिस जगह लगाओगे पौधे बबूल के, तुम जिस जगह लगाओगे
1: पौधे
0: बबूल के, मैं उस जगह ही आम का पौधा
1: लगाऊंगा।
0: शुक्रिया,
1: बहुत खूब
0: नवाजिश। मैं उस जगह ही आम का
1: पौधा
0: लगाऊंगा, बच्चे मेरे न पाएंगे मीठे समर कभी, बच्चे मेरे न पाएंगे मीठे समर कभी, घर में अगर हराम का पौधा लगाऊंगा।
1: नवाजिश, बहुत खूब।
0: बच्चे मेरे न पाएंगे मीठे समर कभी, घर में अगर हराम का पौधा लगाऊंगा। रावण से नाग चाहे लिपट जाए शाख से, शेर देखिएगा, रावण से नाग चाहे लिपट जाए शाख से, चंदन सा एक राम का पौधा लगाऊंगा, चंदन सा एक राम का पौधा लगाऊंगा, ताके रहे जमीन हमारी हरी भरी, ताके रहे जमीन
1: हमारी
0: हरी भरी, तिश्ना लबी में जाम का पौधा लगाऊंगा, तिश्ना लबी में जाम का पौधा लगाऊंगा। मख्ता देखे, इज्जो शरफ नसीब में सरवर मेरे कहाँ, इज्जो शरफ नसीब में सरवर मेरे कहाँ, फिर क्यों ख्याल खाम का पौधा लगाऊंगा।
1: अच्छा है, अच्छा
0: फिर क्यों ख्याल खाम का पौधा लगाऊंगा।
1: बहुत खूब।
0: दो तीन अशार तरन्नुम में समात फरमा लें।
1: इरशाद हो, इरशाद।
0: छोटी बहर में तो

0: भाई, वाह वाह वाह
1: बात,
0: वाह।
1: शुक्रिया। बात क्या है,
0: के हर
1: शेर देखें
0: गोशर
1: मुजरमा।
0: खामोश इरशाद।
1: उसका साथी बिछड़ गया है
0: उसका
1: क्या,
0: साथी बिछड़ गया है
1: उसका
0: क्या?
1: साथी,
0: बिछड़ गया है।
1: उसका साथी बिछड़ गया है क्या। एक पंछी है डाल
0: आय हाय
1: पर
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह,
1: खामोश,
0: क्या कहने हैं भाई।
1: एक
0: एक
1: पंछी।
0: पंछी।

0: उसकी गोयाई सल्ब हो बैठी, मुझको महफिल में देख कर
1: खामोश।
0: खामोश,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मुझको महफिल में
1: देखकर खामोश।
0: देख कर खामोश, मुझको महफिल। ये शेर खसूसी तौर पर
1: इरशाद।

0: क्या कहने भाई, क्या मुआजना किया है।
1: मैं
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हूँ दार पर
0: वाह, बहुत
1: खामोश,
0: खूब,
1: बात क्या है।
0: बहुत
1: और ये
0: खूब।
1: शेर गजल
0: इरशाद,
1: का शायर बराह रास्त कुछ नहीं कहता, लेकिन
0: इरशाद,
1: कारी वहां तक
0: इरशाद,
1: पहुंच
0: बेशक
1: जाता
0: बेशक।
1: है। उसकी

0: दिगर
1: क्या कहने हैं भाई, वाह
0: खामोश
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: और
1: वाह, बहुत खूब बहुत
0: सुनता
1: खूब
0: नवाज़िश
1: बहुत खूब।
0: और सुनता रहे दिगर खामोश और सुनता शेर आखिर कट।

0: क्या शजल खामोश
1: हाय
0: कर
1: वाह
0: भी
1: वाह वाह वाह, क्या आलमिया है
0: सकता
1: भाई, वाह
0: था,
1: वाह वाह वाह
0: क्या शजल
1: वाह वाह वाह
0: खामोश। और मक्ता हाल

0: Chết. मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। साहित्य, संस्कृति और कला केर उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सं गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत, फूल प्रकृति में घोराए लगत, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
5: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।

0: खुशियों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: कुर्बानी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास और कंचन के आवाजों में। इंडिवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म बैराग में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बने कुछ गाने।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल

0: इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे कहानी किस्मत की, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं।

0: विक्टोरिया नंबर 203। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इंडिवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

कुमार सानू और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फूल और कांटे में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया।

चाहत फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। निदा फाजिल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम।

विद्यापति गीत अभी आप सुन रहे थे पंडित सियाराम तिवारी के स्वर में। अगली प्रस्तुति रामकुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित सियाराम तिवारी, राम कुमार मल्लिक, ममता ठाकुर, काशीनाथ झा किरण और विनय कुमार झा को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रमों को। पहली सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग शुद्ध वरारी पर आधारित कबीर भजन। कलाकार हैं पंडित जसराज।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
3: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
3: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
3: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून

0: उनसे बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी

0: अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
0: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
0: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
0: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
0: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
0: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
2: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
0: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवा

0: भस्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
3: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
5: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
6: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
2: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
3: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
2: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी

0: Anzacchi.
1: Great. Marvelous.
0: हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है.
1: Wonderful.
2: हाँ, हाँ, हाँ, हम सहमत हैं.
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था. वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है. कलाकार ने बताया,
3: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है. यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है.
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें. ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए. किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है. यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं.
4: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया. इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब. अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए.
4: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने. कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो. यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया. श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए.

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको इंतजार होगा फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं कुछ नए फिल्मों के नगमे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म डेढ़ बीघा जमीन का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराग सैगिया, राघव चैतन्य ने और रीतृषा शर्मा ने। गीत के बोल हैं रश्मि विराग के और संगीत अनुराग सैकिया का। तो सुनते हैं फिल्म डेढ़ बीघा जमीन का ये गीत।

फिल्म अकेली में भी आप सुन रहे थे गुरु शबद सिंह और चयनिका गर्ग को। गीत और संगीत गुरु शबद सिंह का ही था। अगला गाना हम जो अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म छत्रपति से। इस गीत को गाया है आशकिंग और पलक मुच्छाल ने। मयूरपुरी के बोल हैं और तानिश्क बागजी का संगीत।

पायल देव, राज बर्मन और आकृति मेहरा की आवाज़ में लीजिए सुनिए फिल्म बैड बॉय का ये गीत। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। तो सुनते हैं फिल्म बैड बॉय का ये गीत।

अरिजीत सिंह को भी आप सुन रहे थे फिल्म गदर 2 में। गीत के बोल थे सईद कादरी के और संगीत मिथुन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों एवं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज सोमवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ भूले बिसरे नए पुराने फिल्मी गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर महिला, हर परिवार और पूरे समाज से जुड़ा है। विषय है महिला सुरक्षा जागरूकता।

आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ भूले बिसरे नए पुराने फिल्मी गीतों का, और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर महिला, हर परिवार और पूरे समाज से जुड़ा है। विषय है महिला सुरक्षा, जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत। महिला सुरक्षा केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एक सुरक्षित समाज वही है जहां महिलाएं बिना डर के बाहर निकल सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, नौकरी कर सकें और अपने निर्णय स्वयं ले सकें। आज के समय में महिलाओं के सामने सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां केवल घर और सड़क तक ही सीमित नहीं हैं। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल माध्यमों पर भी सावधानी जरूरी है। लेकिन बहनों, डरना समाधान नहीं है, जागरूक रहना ही इस समस्या का समाधान है। महिलाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, पीछा करता है, धमकी देता है या ऑनलाइन परेशान करता है, तो चुप रहना जरूरी नहीं, बल्कि परिवार के लोगों, विश्वसनीय मित्रों या संबंधित सहायता व्यवस्था से मदद ली जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं शिकायत करने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपनी यही सोच बदलनी होगी। गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है, पीड़ित महिला नहीं। महिलाओं को कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक है, जैसे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहें, रात में या अनजान जगहों पर अकेले ना जाएं, मोबाइल में जरूरी और आपातकालीन नंबरों को रखें, अनजान व्यक्ति से संपर्क ना बढ़ाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी असहज या गलत व्यवहार को नज़रअंदाज ना करें। बहनों, आज के दौर में महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, साइबर सुरक्षा। आज महिलाएं सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। इसलिए मजबूत पासवर्ड रखना, अनजान लिंक या संदेशों पर क्लिक ना करना बेहद आवश्यक है। हमेशा याद रखिए कि आपकी चुप्पी अपराध को बढ़ावा दे सकती है, जबकि जागरूकता और आवाज़ उठाना बदलाव ला सकती है। तो बहनों, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी आवाज को कभी कमजोर ना समझें। तो चलिए, चर्चा आगे और भी होगी, लेकिन इसके पहले सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सीतापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: खूबसूरत लगना हर महिला को पसंद होता है, तो चलिए बहनों, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है घर पर करें फेशियल, और वार्ताकार हैं विजेता सिन्हा।

0: नमस्कार, नारी संसार कार्यक्रम की एक छोटी मुलाकात अंक में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो सहेली विजेता। बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है घर पर करें फेशियल। श्रोताओं, बदलते मौसम में त्वचा रूखी और बेजान सी हो जाती है। जिस तरह हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, जिस तरह पेड़ पौधे को खाद पानी की जरूरत होती है जिससे वो जल्दी बड़े हो जाएं, लहलहाएं और उनमें फल लगे, ठीक उसी तरह चेहरे की सुंदरता बनी रहे, उनमें झाइयां ना हो, दाग धब्बे ना हो, मुहासे ना हो, तो इसलिए समय समय पर चेहरे की सफाई भी जरूरी होती है, जिससे कि हमारे चेहरे की त्वचा को भी पोषण मिल सके, वो चमकदार बनी रहे। इसलिए हमें ब्यूटी पार्लर के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर हर किसी के लिए ब्यूटी पार्लर जाना और वहाँ बैठकर घंटों समय बिताना संभव नहीं होता। इसलिए आप चाहें तो अपनी त्वचा में निखार लाने के लिए घर में रहते हुए भी फेशियल कर सकती हैं, जिससे आपकी त्वचा जवां और चमकदार बनी रहे। श्रोताओं, फेशियल से त्वचा की गहरी सफाई की जाती है, पर इसके लिए फेशियल करने के सही स्टेप्स का पता होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में चेहरे को फायदे के बदले नुकसान हो सकती है। तो आइए अब जानें कैसे करें घर पर फेशियल। बहनों, गंदगी, तेल और मेकअप को हटाने के लिए अपनी त्वचा के हिसाब से सौम्य क्लींजर चुनें। आप चाहें तो कच्चे दूध की मदद से भी चेहरे को साफ कर सकती हैं। इसके अलावा बेसन, कच्चा दूध और गुलाब जल को मिलाकर घरेलू क्लींजर बनाकर चेहरे को साफ करें। श्रोताओं, चीनी, शहद और नींबू के रस जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके आप स्क्रब बना सकती हैं। इन सामग्रियों को एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे पर ऊपर की ओर गोलाकार गति में मालिश करें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें, त्वचा चमकदार हो जाएगी। श्रोताओं, एलोवेरा जो कि प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, इसे अधिकतर घरों में गमलों में लगाकर रखा जाता है। ये भी घरेलू तरीके से फेशियल करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ, एलोवेरा के पत्ते में जो कांटे लगे होते हैं उसे किनारे से हटाकर उसका जेल चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी त्वचा में नमी को बनाए रखते हैं, जिससे त्वचा ग्लो करने के साथ साथ लंबे समय तक जमा बनी रहती है। श्रोताओं, चेहरे की निखार बनी रहे इसमें मुल्तानी मिट्टी की भी अहम भूमिका होती है। जी हाँ, यदि आप मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाकर इसे चेहरे पर, गर्दन पर और कानों पर अच्छी तरह लगाती है, इसे ठंडे पानी से धो लेती है, तो चेहरे पर चमक वापस आ जाती है। तो बहनों, आज हमने घर में फेशियल करने के लिए जो भी उपाय जाना, हमें उम्मीद है कि आप सभी श्रोता बहनें इसे घर पर जरूर करेंगी, क्योंकि त्योहार का जो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, ऐसे में हर किसी का पार्लर जाना और वहां घंटों समय बिताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि ब्यूटी पार्लर में त्योहार के दिनों में भीड़ अधिक बढ़ जाती है और हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वहाँ वो घंटों समय बिताए। तो इसलिए यही अच्छा होगा कि आप घर पर ही घरेलू तरीके से फेशियल करें, जिससे कि आपके चेहरे की सुंदरता भी बनी रहेगी और आपको ब्यूटी पार्लर में समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो बहनों, इस त्योहार के अवसर पर घर पर फेशियल अवश्य करें और अपनी चेहरे की सुंदरता बढ़ाएं। धन्यवाद।
1: कहते हैं आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि

0: किसी के जीवन में रोशनी भरने का जरिया भी बन सकती है। बहनों, आंखें ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो किसी कारणवश दृष्टिहीनता का जीवन जी रहे हैं। यदि हम अपने जीवन के बाद अपनी आंखें दान करने का निर्णय लें तो हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखों की रोशनी किसी जरूरतमंद इंसान के जीवन में उजाला भर सकती है। बहनों, इसी महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है नेत्रदान पखवाड़ा। हमारे जीवन के बाद भी हमारी आंखें किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रंग भर सकती हैं जिसने शायद वर्षों से दुनिया को देखा ही नहीं। किसी बच्चे की आंखों में फिर से स्कूल जाने का सपना जग सकता है। किसी माँ को अपने बच्चे का चेहरा दिख सकता है। कोई बुजुर्ग अपने परिवार को फिर से देख सकते हैं। यही है नेत्रदान का वास्तविक अर्थ। अपने जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी छोड़ जाना। इस नेत्रदान पखवाड़े पर आइए हम स्वयं जागरूक बने और अपने परिवार और समाज को भी जागरूक बनाएं। नेत्रदान करने के इच्छुक व्यक्ति अपने क्षेत्र के अधिकृत नेत्र बैंक तथा स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इसकी सही प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी संस्थान और अधिकृत नेत्र बैंक से प्राप्त की जा सकती है। बहनों, हमारे जीवन के बाद भी जरूर कुछ ऐसा करें जिससे हमारे बाद किसी और के जीवन में रोशनी फैल सके। तो जीते जी रक्तदान, जीवन के बाद नेत्रदान, मानवता के नाम एक महान योगदान हमेशा याद रखें। तो चलिए इसी चर्चा के साथ लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: बहनों, बात करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इससे बचाव के लिए चलिए जानते हैं कि भूकंप में क्या करें और क्या ना करें। भूकंप का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सतर्कता और जानकारी। अगर भूकंप के झटके महसूस हों तो बिल्कुल घबराएं नहीं। यदि आप घर के अंदर हैं तो तुरंत जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत मेज के नीचे बैठ जाएं और सिर और गर्दन को हाथों से ढककर सुरक्षित रखें। भारी वस्तुओं से दूर रहें। जो वस्तुएं गिर सकती हैं उनके आसपास भी ना जाएं। लिफ्ट का और सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। अगर घर से बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और बड़े बड़े पेड़ों से दूर रहें। किसी खुले स्थान पर चले जाएं। भूकंप के झटके रुकने के बाद भी आप सावधान रहें, क्योंकि ये झटके दोबारा आ सकते हैं। तो बहनों, याद रखिए कि भूकंप के समय डर नहीं, सही कदम आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो चलिए बहनों, इसी विषय पर आगे भी हम लोग जानेंगे हर दिन कुछ खास में, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

0: और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420

0: 02233 पर कॉल करें।
1: बहनों, वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम जानेंगे कुछ टिप्स भूकंप से बचाव के बारे में। तो भूकंप आने पर सबसे पहले तो आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, घबराएं नहीं, और कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि दवाइयां, मोमबत्ती, टॉर्च, रुपए, ज़रूरी कागजात, चश्मा, इन सारी चीज़ों को और चोट लगने पर तत्काल चिकित्सा के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स बना करके अलग से रख लें, और इन सारी चीज़ों को किसी एक जगह पर किसी झोले या किसी बॉक्स में इकट्ठा करके रख लें ताकि भूकंप की स्थिति में आवश्यक सामान हमारे साथ में रहे। याद रखें बहनों, एक बार भूकंप आने के बाद दोबारा आने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए इस प्राकृतिक आपदा से बचाव सतर्कता ही है। हमेशा याद रखें, भूकंप आने पर घबराएं नहीं, सही तरीके से बचाव करें। अगर आप भी चाहें तो भूकंप से सुरक्षा से संबंधित सुझाव हमें हमारे पते पर लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, चलते चलते एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ये।

चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगी। चलिए बहनों, अभी आप सुन रही हैं फिल्म क्रोधी का ये प्यारा सा गीत। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए विदा श्वेता को। नमस्कार।

0: बहनें अभी नारी संसार कार्यक्रम सुन रही थीं। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, दिन के एक बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स

धार्मिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेन देन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया।

रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं।

कुछ देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, अर्थात दोपहर 1:10 से। फिल्मी गीतों का समय होगा दोपहर 1:15 से।

रोजगार संबंधी जानकारी हमारे श्रोता प्राप्त करते हैं दोपहर 2:10 पर, लोकगीत अपराह्न 3 बजे से आप सुन सकते हैं।

और अब सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। युववाणी के साथ ही आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता उठा सकते हैं संध्या 5:40 पर। महाकवि

ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7 बजे से। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार रात 8:15 से आप सुन सकते हैं। पब्लिक स्पीच रात 9:30 से और इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाते हैं। और हेलो आकाशवाणी रात 10 बजे से।

स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म राखी से। स्वर था मोहम्मद रफ़ी का, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और रवि का संगीत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म आई मिलन की रात का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद असीज़ एवं अनुराधा पौंडवाल ने। समीर की रचना है और आनंद मिलिंद का संगीत है।

फिल्म इज्जत की रोटी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मंगल सिंह और अनुराधा पौंडवाल की आवाजों में। अनजान के बोल थे और बप्पी लाहिड़ी का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आसपास का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: भूपेंद्र सिंह के गाए फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जारी रहेगी। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि योजना को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का क्रेडिट सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में प्रत्येक दिन 2400 घंटे शिक्षकों के लाइव रहने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने आज लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार विद्या साथी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार दिन के किसी भी पहर ऑनलाइन शिक्षकों की मुफ्त सहायता मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पसंद के शिक्षक से पढ़ सकेंगे और पढ़ाई से जुड़ी शंकाओं का तत्काल समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन आज संसदीय समिति ने राज्य में नागरिक उड्डयन संपर्कता बढ़ाने, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर पटना में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के मुद्दे पर भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सड़क परिवहन के सुविधापूर्ण विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया गया। संसदीय दल आज पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी, बिहार म्यूजियम समेत विभिन्न प्रमुख स्थलों का भ्रमण भी करेगा। रेलवे ने देश भर के रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

0: इसके तहत पेयजल टैंकों और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और कीटाणु शोधन का कार्य किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी हुई है। इसके प्रभाव से खगड़िया, मुंगेर, नालंदा और नवादा समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों में विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। पटना और आसपास के क्षेत्र में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के सभी प्रमुख घाटों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस बीच नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और इससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। श्री अधिकारी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मंसूबा जारी रहेगा। जनाब चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में वाजह किया कि इसके पेश नज़र तलबा और गार्जियनों में किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंसूबा के तहत आला तालीम के लिए 4 लाख क्रेडिट सहूलत पहले की तरह जारी रहेगी। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि रियासत के 700 मॉडल स्कूलों में रोज़ाना 24 घंटे असातज़ा के लाइव रहने का नज़्म किया जा रहा है। वज़ीर-आला ने लोक सेवक आवास के संकल्प भवन में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान बिहार विद्या साथी डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म का आगाज करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे दर्जा 9 से 12वें तक के तलबा को अपनी सहूलत के मुताबिक दिन के किसी लम्हा ऑनलाइन असातज़ा की मुफ्त तावुन मिलेगी। तलबा अपने पसंद के टीचर से पढ़ सकेंगे और पढ़ाई से मुतालिक मसाइल का फौरी हल हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर-आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। जदयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय झा की सदारत वाली पार्लिमानी मुस्तकिल कमेटी 3 रोज़ा बिहार दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन आज पार्लिमानी कमेटी ने रियासत में शहरी हवाबाजी का राबता बढ़ाने, सकाफती विरासत और टूरिज्म के इम्कान के पेश नज़र पटना में आला अफसरान के साथ मीटिंग की। कमेटी ने कौमी शाहराह के फरोग और रखरखाव के मामले पर भी महकमा के अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान सड़क ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतों से मुतालिक मुख्तलिफ मामलों पर सलाह की गई। पार्लिमानी पार्टी आज पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी, बिहार म्यूजियम समेत मुख्तलिफ अहम मकामात का दौरा भी करेगी। रेलवे ने मुल्क के रेल नेटवर्क में खसूसी सफाई मुहिम शुरू की है। इसका मकसद रेलवे

0: स्टेशनों पर मुसाफिरों को लगातार साफ और महफूज पीने का पानी दस्तयाब कराना है। इसके तहत पानी के टैंकों और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और जरासीम से पाक काम शुरू किया जाएगा। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी बरकरार है। इसके असर से खगड़िया, मुंगेर, नालंदा और नवादा समेत रियासत के जुनूबी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियानी से तेज बारिश हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद समेत रियासत के जुनूब मगरबी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी की आबी सतह में इजाफा के सबब पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के जैली इलाकों में पानी फैल गया है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। मरकजी आबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक पटना के सभी अहम घाटों पर नदी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। इस बीच नदी की लगातार बढ़ती आबी सतह और इससे पैदाशुदा सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए रियासती हुकूमत ने मगरबी बंगाल हुकूमत से फरक्का बराज के सभी फाटक को खोलने की अपील की है। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के वज़ीर-आला शुभेंदु अधिकारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करके उन्हें तशवीशनाक हालात से आगाह कराया। जनाब अधिकारी ने इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी है। भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम लगा हुआ है। पूरा माहौल ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज रहा है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ, मुजफ्फरपुर के गरीब नाथ, सोनपुर के हरिहर नाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिन्हेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान, अररिया के शिवधाम और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में कसीर तादाद में अकीदतमंद भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में कसीर तादाद में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का पानी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके झारखंड के देवघर वाक़ बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कुल 147 पदों की रिक्तियां बताई हैं। आवेदन ऑनलाइन शुरू करने की तारीख 8 अगस्त 2026 से लेकर 7 सितंबर 2026 तक जारी रहेंगी। वैसे अभ्यर्थी इसके ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर भी देख सकते हैं। आरआरबी जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर के लिए कुल 4029 पदों की रिक्तियां आई हैं। ऑनलाइन आवेदन 14/8/2026 से शुरू है और इसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 है। ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क पदों के लिए कुल 9124 रिक्तियां निकाली हैं। इसके लिए आवेदन आरंभ की तिथि है 11/8/2026 से लेकर 31/8 अर्थात इसी महीने के 31/8/2026 तक।

0: अभ्यर्थी एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट आईडी है onlinesbi.sbi.bank.in। और उसके बाद बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी STET 2026, जी हाँ, ऑनलाइन शुरू आवेदन हो चुका है 17/8/2026 से लेकर, और इसके भी अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि है 31/8/2026 तक। कुल पद कितने हैं वे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, basebstate.org पे। तो ये थी कुछ रोजगार संबंधी सूचना, रोजगार संबंधी सूचना समाप्त होती है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए,
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी

0: भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइन दिस डेलीगेशन।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को, कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
2: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब

0: 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता

0: है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रमों को। आइए एक बार फिर से आप लोगों को सुनवाते हैं कुछ फिल्मी नगमे। सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म 9211 का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार एवं आशा भोसले ने।

फिल्म निकाह में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर को। हसन कमाल की रचना को संगीत दिया था रवि ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

लता मंगेशकर एवं महेंद्र कपूर के गाए फिल्म आए दिन बहार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कुछ लोकगीत। आज के कलाकार थे विभा सिन्हा, संत कुमार झा, राधामोहन मिश्र एवं ब्रजेश कुमार सुमन। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अपराह्न के 3:20 हो चुके हैं। अब हमारी पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में शाम 5 हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।

0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
1: अरे भाई भीखू,
0: देखो, बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और दो छह छह आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा, ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती हैं। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती है।
1: ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।

0: जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते
1: जी
0: हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितैषी हैं,
1: हाँ
0: उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते
1: हाँ
0: हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है
1: जी
0: ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं, जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं।

0: और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और
1: जी।
0: हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में, तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया
0: ये
1: है।
0: सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है।
1: हाँ
0: और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता
1: हाँ
0: है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने
1: बहुत
0: छोटे
1: छोटे हो जाते हैं।
0: लगने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
1: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को,
0: और
1: मुश्किल
0: बड़ा
1: को
0: बना
1: बहुत
0: लेते
1: बड़ा
0: हैं,
1: बना
0: और
1: देते हैं।
0: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना
1: तो
0: होगा।
1: हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है, ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
0: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
1: हाँ
0: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
1: जी
0: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो
1: और
0: जाता है।
1: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीजें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
0: बिल्कुल
1: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है, ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
0: बिल्कुल
1: है।
0: हमें संबल देता है और
1: जी
0: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
1: जी
0: और घबराने की बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, हर मुश्किल के बाद 2 चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
1: बिल्कुल
0: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
1: जी
0: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले लाके रख देते हैं, दालें लाके रख देते
1: हाँ
0: हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
1: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो

0: खता।
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं जो सफल व्यक्ति हैं,
2: बिल्कुल महान व्यक्ति जो हुए हैं,
1: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
2: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
2: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है पर यह परखती है कि अपना इरादा ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
2: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक को शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है
1: जरा
0: कभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वो बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं, थोड़ा अपने बारे में अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
1: क्या
2: ये माध्यम से,
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो। ये कितना खतरा

0: खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ 20 से 22 हजार है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1 लाख के ऊपर है तो उस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी,
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
0: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
1: हाँ,
0: पर थोड़ा संभाल के।
1: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
0: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
1: बिल्कुल
0: ना, तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए
0: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है, मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: 40-50
1: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए,

0: आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों हो जा रहा है।
1: और पुरुषों में?
0: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर
1: जी
0: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, जो एबनॉर्मल है,
1: ठीक
0: इसको
1: बात
0: नॉर्मल नहीं कहा जाता है।
1: जी।
0: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
1: ये जो
0: जिसको
1: आपने
0: हम,
1: टर्म यूज की
0: हाँ,
1: ये क्या है?
0: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन है परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है।
1: ब्लू कलर की रोशनी में?
0: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं। उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट
1: जी
0: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
1: बिल्कुल
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, शेड होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है, तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है,
1: जी बिल्कुल
0: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन,
1: ये समझने की बात
0: ये
1: है।
0: समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के।
0: नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट
1: ओके
0: एक डिग्री नहीं है।
1: जी जी
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं
1: ओके
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूं,
1: जी
0: लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर, यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं, किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है,

0: या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
1: और उसका असर बालों पर जाता है।
0: बिल्कुल
1: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
0: सो महिलाओं में पीसीओडी नाम सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी पीसीओडी हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
1: जी,
0: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे
1: बढ़िया
0: तो
1: बात,
0: हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है, तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है। और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं,
0: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
1: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वही गर्म किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं
1: जी।
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो है वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खान पान ठीक नहीं किया तो नहीं, इसका
0: सभी
1: असर
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं
1: हाँ,
0: और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है. एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है.
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है. आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी. आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं, बोलो खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा.
0: ओके
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है. पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन. अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है. बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका.
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल, यही डायलॉग होता
0: जी। तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ,
0: लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना है. आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर बता
1: शेडिंग.
0: दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए. अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को.
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शीका काई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना
1: नहीं,
0: घरों में?
1: मेहंदी, रीठा, शिकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा. ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं.
0: उल्टा हो जाएगा।
1: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के, और उनका इम्प्रूवमेंट होता है. बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं. अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे, और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे.
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा।
1: यस, सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का.
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया, या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इंप्रूव, ऑल इज वेल.
0: जी
1: यू विल इंप्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम.
0: ओके उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी।
1: यस,
0: मुझे लगता है यहां पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन हैं, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओहो हो हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं नहीं नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओहो हो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल,
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं नहीं, ये हिसाब लगाइए, तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो हो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो

0: थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे
1: जी?
0: तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
0: यस, बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है। मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है। तो ये
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
1: हाँ, जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं?
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो

0: उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
1: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
0: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
1: और यहाँ तो उल्टा दिन भर का खाना रात को हो रहा है।
0: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस, बिल्कुल।
0: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
1: बिल्कुल।
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी, और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है. ना इवन पैसिव स्मोकिंग. कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं.
2: प्लैनेट होने का कट ऑफ क्लियर नहीं कर